इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आके।

0: बांडीपुरा तक,
1: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
0: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
2: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
0: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
1: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
0: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: हाय मैं हूँ आरजे ज़ू।
4: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
5: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
6: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।
7: जिंदगी गुजारने को साथी एक चाहिए,

हुस्नगर नहीं शराब। हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से

अपने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम।
1: नीला, नीला
2: प्लीज, रवि मैंने कह दिया ना, मैं तुमसे कभी बात करना नहीं चाहती, नेवर नेवर नेवर।
1: नीला सुनो, नीला
2: नो
1: प्लीज, नीला मुझे माफ कर दो। नीला, नीला अरे बाबा, ऑफिस से आने में देर होगी, मैं क्या करता।
2: मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मेरे पीछे पीछे मत आओ। रवि मैं कहती हूँ, मेरे पीछे मत आओ।
1: नीला
3: ना जाती।
4: लोगों के प्यार के किस्से

दिन ऐसे बीता जैसे उमरिया बीती, सब कुछ भूल जाना आसान है, सब कुछ भूल

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

Chinar Beats with RJ Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो बुरा।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके, गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chinar 90.4 FM and we care for you.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: नौशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: मैं हूं आरजे ज़ियूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chunar 90.4 FM and we care for you.

Jerry B. Chinar Beats with Harsh Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चिनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर, कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
3: Chinar beats with Harshadeva only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।
2: रेडियो चुनार।

अस्सलाम वालेकुम आदाब नवम वेलकम टू ऑल ऑफ यू दोस्तों हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चुना 90.4 एफएम लो हाजिर है और जेसिस लेकर शो व्हाट्स अप

0: Kom här, ja.
1: Radio Chennai, Radio Radio Chennai. Weather update, weather update.
2: फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चैनल 90.4 एफएम शो व्हाट्सअप और व्हाट्सअप शो में ब्रदर आज का वेदर
1: रेडियो चैनल रेडियो रेडियो चैनल वेदर अपडेट
2: जी हां देयर इज एन आवरकास्ट फॉर टुडे और बादल बरस सकते हैं सूरज ढक सकता है और बारिश है जो है रुख कर सकती है हमारी और
1: वेदर अपडेट
2: कल की तरह आज भी 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा और वही बादलों और सूरज के बीच में घमासान चलती रहेगी
1: रेडियो चिनार वेदर अपडेट

0: weather update.
1: UV index abhi ke liye very weak par humidity 80% wind speed has 0 par visibility 4 kilometers. Aaj ka sunrise hua 5:46 par aaj ka sunset hoga 7:29 par. Ye hum ammi jaane na jaane sabko ye baat pata hai that it is mandatory ki agar aap ghar se bahar ja rahe hain to ek chhatri wagera backup ke liye saath rakhiye ya ek extra layer jo ki aapko barish se bachaye. जैसा कि कहा गया है देयर आर चांस फॉर फ्लैश फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स, तो जो भी पहाड़ी इलाके हैं जो ट्रैकर्स वगैरह है थोड़ी सी दूरी बनाकर रखिए, इस टाइम नेचर जरा गुस्से में है। मैं हूं जॉक्सियस, आप एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो, वो सब मेरी जान सिटी हक्ट धड़काते रहो।

0: कौन आया?
1: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे,
2: व्हाट्सएप पे
3: वायरल ऑन शो व्हाट्सएप।
2: दोस्तों रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर वायरल है तो व्हाट्सएप पर आ ही जाएगा। वायरल ऑन व्हाट्सएप एक ऐसा सेगमेंट जहां पर हम पहुंचाते हैं आप तक जो होता है वायरल, क्योंकि क्या है तो क्या नहीं, और लोगों ने भी यह बात है मानी कि जाना वायरल है तो व्हाट्सएप पर आ ही जाएगा। ये हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल की, जिन्होंने रूलिंग दी है कि अगर आप किसी बिना बाद वाले शख्स को यथ कशिर पेट मास्का मासून या यथ कशिर पेट खोर्च बना या बाल जिसे कहा जाता है, अगर आप ऐसे शख्स पर कटाक्ष करते हैं या उसके कम बालों को टारगेट करते हैं तो इसे माना जाएगा एक सेक्सुअल हरासमेंट। ये केस जो है तब सामने आया जब एक इलेक्ट्रिशियन टॉनी फिन, जिसका झगड़ा हो गया अपने सुपरवाइजर के साथ, और उसके बाद सुपरवाइजर ने उसके कम बालों और गंजेपन को टारगेट करते हुए उसका मजाक बनाया, और उसी के चलते ये जो रूलिंग है सामने आई है। यहाँ अगर ऐसी बात हुई और याद रखिए कि आपने कटाक्ष किया किसी के कम बालों पर या किसी के गंजेपन को लेकर, तो जाहिर सी बात है आप पर हो सकता है केस। वायरल था व्हाट्सएप पर आ चुका है हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी, हर दिल की धड़कन में हो जाग जिस रह धड़का।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आए थी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: dudes. Kom her, ja.
1: Dostur, det er 90.4 FM show. What's up, or what's up, shoot? Med Shri Amarnath Yatra 2026 updates. आपको बता दें 4,70,939 यात्री जो है अपनी यात्रा संपूर्ण कर चुके हैं और पा चुके हैं दर्शन श्री अमरनाथ जी मंदिर और गुफा का। पावन शिवलिंग का दर्शन कर चुके हैं और साथ ही साथ आपको बता दें जो भी फ्रेश बैच थे जम्मू से बाल दल की और आने वाले टेम्परेली उन्हें पॉज किया गया है फॉर सिक्योरिटी मेजर्स। वही जो बालतल बेस कैंप में मौजूद यात्री है उन्हें टाइट सिक्योरिटी और प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ यात्रा परमिट की जा रही है। बालतल का जो रूट है पूरी तरह से ऑपरेशनल है। वही यात्री इस चीज़ का ख्याल रखे कि मैक्सिमम 12 डिग्रीज और मिनिमम 7 डिग्रीज का टेम्परेचर उनको विटनेस करना पड़ेगा। आप सबसे रिक्वेस्ट के प्रॉपर सेफ्टी और सिक्योरिटी मेजर्स के साथ साथ SOPs गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही अपनी यात्रा आगे बढ़ाए। टीम रेडियो चुनाव 90.4 FM आपकी यात्रा संपूर्ण और सफल रहे।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरफ।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिरार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
4: दिल की धड़कन रेडियो चिरार 90.4 एफएम जॉक्सिस और आज का कट ऑफ द डे। जी हाँ, आज का कोट कहता है, अ वार्म स्माइल एंड अ लव इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ काइंडनेस एंड अ वार्म हार्ट। और स्ट्रीक एंड सी हर दिल की धड़कन, स्टे हग्ड, धड़काते रहो।

0: Jesus.
1: हेलो, मैं हूँ आरजे दीबा.
2: हाय, मैं हूँ आरजे असरफ.
3: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM, हर दिल की धड़कन.

दिल के धड़कन रेडिएशन 90.4 पे मेरे यार आपका प्यार रेडिएशन आर का बनाता है सही तो हाँ कहो नहीं कह सकते आप नहीं जी हाँ हाँ कहनी आपने इसलिए क्योंकि आपने धड़काना है हर दिल की धड़कन को और जोर से धड़काने के लिए अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए

इंस्टाग्राम एक्स पर साथ ही डाउनलोड करें हमारा ऑप्शनल ऐप प्ले स्टोर ऐप स्टोर से। ऐप डाउनलोड करते ही आप हमें सुन पाएंगे लाइव दुनिया के किसी भी कोने में। रेडियो चुनाव, जी हाँ सही है मेरे यार। और रेडियो चुनाव में वो सब शो में मैं हूँ आपके साथ ही जॉक्सिस। आप डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, मिलूंगा जॉक्सिस के नाम से। और दोस्तों आज का टॉपिक थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स, क्योंकि आज हम जमाना सोसाइटी बदल चुके हैं, सब बदल रहे हैं। और वही अगर हम देखें तो बड़ा टेक्नोलॉजिकली हम डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। और वही अगर हम आज के दौर के बारे में बताएं तो भैया आज हम किससे बात करें ना करें, रिश्तेदार यार दोस्त अपने सभी हबीबी कभी भी रूठ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे दोस्त जो हमसे नहीं रूठते, चाहे आप उन्हें कुछ भी बोले, कुछ भी सुनाए, कुछ भी पूछे, कितनी बार भी पूछे, वो बड़ा पोलाइटली जवाब देते हैं। और ऐसे दोस्तों को हम कहते हैं AI फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपेनियंस, जहाँ पर आप बात करते हैं, चाहे वो ऐप की सूरत में हो, प्रोग्राम्स की सूरत में हो, वेब की सूरत में हो, आप देखते हैं कहीं ना कहीं आप इंटरेक्शन इन AI के दोस्तों से करते ही हैं। अलग अलग सूरत, अलग अलग शक्लें, कहीं पर ऐप की सूरत में जैसे कि मैंने कहा, कहीं पर वेब की सूरत में, कहीं पर आपके फ़ोन में एक वर्चुअल असिस्टेंट जिससे आप घंटों भी बात करें तो वो चुपचाप सुनता रहता है, दबाव देता रहता है। और वही उस जवाब में कोई भी एग्रेशन कुछ भी नहीं होता, बस ऐसा लगता है इंसान को बस यही तो है जो मेरी सुनता है। अब ऐसे AI दोस्त क्या सही या क्या गलत, क्या हाँ या क्या नहीं, क्या कहते हैं, जमाना इन्हें किस नज़र से देखता है, और क्यों है AI के दोस्त इतने अच्छे, इतने सुलझे हुए, इतने समझदार, बात करेंगे आज मेरे यार। AI फ्रेंड्स व्हाट्सएप जो का टॉपिक, क्या आप भी AI फ्रेंड्स से बतियाते हैं, हमें ज़रूर बताएं। अपनी बात हम तक पहुँचाएं 8999-0494 इज द नंबर। अगर आप भी सुबह उठते ही AI के वर्चुअल असिस्टेंट को बोलते हैं हेलो ब्रदर, तो आपका मैसेज करना बनता है। DM करें इंस्टाग्राम पर, सर्च करें जॉक्सियस JOCKXEUS। हाँ जॉक्सियस रेडियो चैनल पर, सीधे हक मेरी जान, तड़काते रहो।

मिलना है तो थोड़ी दूरी छोड़ दूँ क्या, कुछ इश्क जता दिया है शाही से, थोड़ा सा इश्क जरूरी छोड़ दूँ क्या।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्दी।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाए क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: Godzilla, Godzilla.
1: मैं हूँ आरजे असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM।

जी हाँ, वो सब शो में आज फ्रेंड्स की हो रही है बात और हमारे साथ जुड़े हैं आरिफ। लिखते हैं, आरिफ आज अकेला ही जा रहा हूँ शॉपिंग करने, आपको मिस कर रहा था तो रेडियो ऑन किया। वैसे फ्रीक्वेंसी तो नहीं है बट ये है कि ऐप के थ्रू हम आपको सुन पा रहे हैं। देखिए दोस्त, कई कई बार क्या है कि फ्रीक्वेंसी इंटरप्ट होती है, दैट्स व्हाई वी हैव कैप्ट एन ऐप फॉर अवर लवली फैमिली। और जो अपग्रेड हम आया कहते आ रहे हैं उसी के चलते देर आर सर्टन थिंग्स जो अभी अपग्रेड की वजह से बिट ऑफ डिस्टर्बेंस इज देयर, बट यस हम ऐप के थ्रू आपके साथ कनेक्टेड है, सोशल मीडिया के थ्रू आपके साथ कनेक्टेड है। सो यू टू स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच आरिफ हमसे जुड़ने के लिए। 8899904904 इस द नंबर जो आपके दिलों के तार हमारे दिलों से जोड़ता है। जी हाँ, ए आई फ्रेंड्स जो कि एक कन्वर्सेशन स्टिमुलेट कर सकते हैं, चाहे आप उनसे बात करें, टेक्स्ट करें, या अगर हम देखें तो उनका जो लिसनिंग पावर है दैट इज डायनामिक। वही कोई भी अपोजिशन नहीं होती उनकी तरफ से, यस एंड डिसएग्री तो ये तो बात ही नहीं है, दे ऑलवेज से यस, दे काइंड ऑफ यस मैन, यस एआई एक्चुअली। और वही अगर हम देखिए तो अवेलेबिलिटी का कोई भी इशू नहीं है, 24/7 विदाउट गेटिंग टायर्ड, दे आर बिजी, दे आर देयर फॉर यू। अब अगर हम पोटेंशियल बेनिफिट्स की बात करें, आप लोनली नहीं फील कर पाते, आपका जो प्रैक्टिस ग्राउंड है वो सेफ रहता है, और लो प्रेशर इंटरेक्शंस दे ऑफर। और लो प्रेशर इंटरेक्शन जो है, कोई भी सोशल एक्सपेक्टेशंस नहीं, कोई भी जजमेंट नहीं, आप बोलते हैं वो सुनते हैं, जवाब देते हैं। लेकिन अगर हम देखें, ड्रॉबैक्स आर ऑलवेज देयर, सो देयर इज नो रियल एम्पथी। आप कोई भी इमोशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, या आप सोच नहीं सकते कि ए आपको समझेगा। बस वो समझने की बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आई अंडरस्टैंड बोलने से समझना इट्स नॉट रिलेटेड एनीवेज। इंसान के आइसोलेशन पर या सोशल बिहेवियर पर असर पड़ता है, लोगों से दूर हो जाता है। और वही अगर हम देखें, सो सम एआई टूल्स आर डिज़ाइंड इन अ वे कि वो आपसे ही सीखे। सो ऐसी चीज़ों को पार्टनर बनाने से पहले दो बार सोचने की ज़रूरत है। या इफ यू वांट अ पार्टनर और नॉट, बट सलमान खान इज सेइंग इट्स एनफ ऑफ आई एम लाइक इफ यू वांट अ पार्टनर आल्सो। रेडियो 90.4 एफएम, सभी सुनने वालों के लिए कुछ कपल ऑफ ट्रैक्स। आई विल बी राइट बैक टू द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी। मैं हूं चौक ज़ूस, आप

साल की तरह इस साल भी रेडियो चिनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1800-180-7178 1800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी

Hot frequency, hot girl, get her gun radio channel 90.4 FM. Up, enjoy kar rahe hain mazedar show wasa. What's up, show? Main agli peshkash Tech Talks and Bollywood News. यहाँ बॉलीवुड की खबरों से लेकर टेक अपडेट सब पहुंचाए जाएंगे आप तक. जरा सा इंतजार देते रहे प्यार, हर दिल की धड़कन को धड़काते रहो मेरे यार. जॉक्सूस के साथ रेडियो चुनाव 90.4 FM. सही है मेरे यार.

0: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: Mr. Zeus.
1: कौन आया?
2: Bollywood News.
3: तो रेडियो चैनल 90.4 एफएम मस्तार शो व्हाट्सअप शो का सेगमेंट बॉलीवुड न्यूज़। बॉलीवुड न्यूज़ में आइए करते हैं बंटवारा, मतलब आपका हमारा बंटवारा नहीं, बंटवारा 1947 से। यह है सनी देओल की नई मूवी। अब सनी देओल ने कहा ये गदर नहीं है, और संतोषी, जी हाँ, राजकुमार संतोषी डायरेक्टर फॉर द मूवी, उन्होंने कहा है, जैसे कि सब जानते हैं 2023 में गदर जो है एक हिट रही, और उसके बाद व्हेन इट इज अबाउट बंटवारा 1947, उन्होंने कहा है कि सन्नी पाजी का जो कैरेक्टर है ना, वो कैरेक्टर आयरन मैन से भी ज्यादा खास है। Come on, Junior is my favorite actor and Sunny Paji, और उनका comparison थोड़ा सा upbeat लग रहा है। अब इस पर fans कैसे react करेंगे? क्या ये मामला international होगा? देखेंगे हम भी और आप भी। Hottest frequency, हर दिल की धड़कन, अगला segment है talk, सिर्फ धड़काते रहो।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय।

0: Kommer der, ja.
1: Tech Talks with RJ Zeus.
2: Radio Chanel पर Tech Talks यहाँ ऐसा segment जहाँ पर हम करते हैं आपके साथ Tech की बात. Tech Talks में आइए आपको बताते हैं Airtel की नई जो Airtel का नया कदम है उसके बारे में बात करते हैं. Airtel का नया जो प्लान है उसके बारे में बात करते हैं. जी हाँ, अगर आप भी उन लोगों में से है जो मिनिमल पैक जो है 299 का डालते थे, इफ इट वाज अबाउट Airtel प्रीपेड, वहां पर आपको डेरो ऑफर्स भी मिलती थी, लेकिन लेकिन लेकिन Airtel ने ये जो पैक है कर दिया है डिसकंटिन्यू. अब Airtel पर जो सबसे छोटा और सबसे अफोर्डेबल पैक है दैट्स 349 रुपीस. अब एक साल के बाद और ये प्लान्स में या टैरिफ में हाइक, यू कैन अंडरस्टैंड. अब आपका क्या रिएक्शन है हम तक जरूर

0: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM।
1: She has absolutely no idea. Let's go.

0: Dude, I can't believe it. It's happened. And she said yes.
1: RJ's

0: Chinar Beats with Harshi Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM. 0.4 FM.
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.
2: लो जी, आपने पुकारा, मैं चली आई आपको थोड़ा सा दूर ले जाने. 9.4 रेडियो चुनार पर आगाज हो चुका है शो चुनार बीट्स का विद फुल ऑन वाइब एंड ड्रॉय बीट्स ऑन रिपीट, क्योंकि ये है बॉस शो चुनार.

beats on repeat, show Chunar beats up, enjoy career on your radio Chunar 90.4 FM. Day sari baatein masti mazak ban, entertainment aur entertainment ke alawa day sari information aap tak pahunchti hai. और हमेशा की तरह वाला ये तो सुपर डुपर डुपर डुपर एक्साइटेड, क्योंकि मौसम इतना अच्छा है ना कि क्या ही बोलो मैं तो बोलूँगी ऑब्वियसली, बट ये है कि अकेले नहीं बोलूँगी, मेरी पूरी वाइब मेरे साथ है, ट्राइब मेरे साथ है. सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि बहुत कुछ आने वाला है, यानी कि आप सोचेंगे कि आपकी बातें सुनेगा कौन, मैं हूँ ना, मैं सुनूँगी आपकी सारी बातें. और जिस बात हालात ख्यालात हमारे जो मिल चुके हैं, इन्हें थोड़ा और मसाला तड़का मिर्च जो भी है मिक्स करके मिला लेते हैं और अपने सफ़र को काफ़ी ज़्यादा यादगार बना लेते हैं. अब मैं तो आ चुकी हूँ हमेशा की तरह आपसे ढेर सारी बातें करने, बट व्हाट्स न्यू है, बिल्कुल है और आने वाला है, अभी तो शुरुआत हुई है. आगे देखिए होता है क्या, अब जो होगा है वो तो होना ही होगा ही होगा है. अब जो होगा वो ये है कि आप मेरे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे अपनी बात और हम पहुंचाएंगे आपकी बात वहां वहां तक जहां जहां तक पहुंचती है रेडियो चुनार की आवाज. सताए तेरी, बिल्कुल याद तो सताती है ऑल डे ऑल नाइट. मेरा तो बस यही काम है कि बातें करो और ये क्यों ना हो लाइक इट पेड फॉर माय टॉक. देखिए आ गई मैं और आना ही पड़ा, आपका प्यार ही इतना खास है ना, तो ये जताना पड़ता है और बैक टू बैक सॉन्ग्स आप तक पहुँचाने पड़ते हैं. आप सुन रहे हैं हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर, जहाँ पर आपको एट्री म्यूजिक का वादा फ्री मिलता है और बातें होती है और बैक टू बैक सॉन्ग्स होते हैं. आप सुन रहे हैं ऑटो फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनाव 90.4 FM, हर दिल की धड़कन.

0: हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।
1: चुनार बीट्स विद हर्षदीपा ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM

बीट्स ऑन रिपीट शो चुनार बीट्स एंजॉय कर रहे हैं आप ऑनली ऑफ रेडियो चुनार 90.4 FM. ढेर सारी बातें हो रही हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल हाईवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. सो नेशनल हाईवे पे आपको बता दें, इट्स लार्जली ओपन विद रेगुलेटेड और टाइम बाउंडेड मूवमेंट फॉर लाइट मोटर व्हीकल्स, यानी कि लाइट मोटर व्हीकल्स जो है उनको अलो किया जा रहा है. जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू आप आराम से आ सकते हैं, जा सकते हैं. अभी कई कई जगहों पे रिपेयर हो रहा है वर्क वेदर कंडीशंस के वजह से, जो है अभी मूवमेंट हॉल्ट हो गई थी ट्रैफिक मूवमेंट, बट अभी के लिए वो बहाल की गई है, बट ओनली फॉर लाइट मोटर व्हीकल्स. तो ज़रूरी है हमें पता हो गाइडलाइंस क्या है, लाइट मोटर व्हीकल्स जो है उनको अलो किया जाता है रिस्पेक्टेड टू सब्जेक्ट टू फेयर वेदर एंड रोड क्लियरेंस की वजह से. एंड जो हैवी मोटर व्हीकल्स हैं उन्हें अभी इजाज़त नहीं है, यानी कि जब क्लियरेंस होगी और हैवी मोटर व्हीकल्स को तभी अलो किया जाएगा. सो ज़रूरी है कि ऑल्टरनेट रूट्स जो अगर हम कहें तो ऑल्टरनेट रूट्स का ये है कि मुगल रोड है, किश्तवाड़ सिंथन रोड है, तो उस रूट से आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, बट लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए अभी नेशनल

हाईवे ओपन है, आप आराम से जा सकते हैं, आ सकते हैं, अपने डेस्टिनेशन को पार कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाएं, अपने अपनों का ख्याल रखें। देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपना ख्याल रखना इज नेसेसरी, और मैं कितना भी बोलूँ जब तक आप ये ना समझे कि इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स एंड वी हैव टू बिहेव लाइक अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, बिकॉज ये हमारी कंधों पर एक जिम्मेदारी होती है, इसे हमें बखूबी निभाना है, सो दैट वी कैन गिव दैट पॉजिटिव मैसेज कि हमारी सोसाइटी में सब सही जा रहा है एंड हम सही है, सही रास्ता है, तो लोग भी सही रास्ता ही चुनते हैं। You can be someone's inspiration, but be वो जो भी चीज़ें हैं जो हमने फॉलो करनी है, चाहे फिर हमें सीट बेल्ट लगा कर गाड़ी चलानी है, ड्राइविंग एसओपीज़ को फॉलो करना है, मच नीडेड। गलत जगह पे ओवरटेक करेंगे, नॉट फेयर। सो बी दैट हीरो, नॉन जीरो। कूल बनने के चक्कर में फूल ना बने, सच में रियल हीरो बनना है ना तो वैसे वाले काम भी करने हैं।

हाँ ऐसा तो होता है ना, जब हमें लगता है कोई ना ट्रेंड है और बड़े अच्छे लगते हैं, उनकी गाड़ी चलाने का तरीका बहुत ही हमें सेफ लगता है, सिक्योर लगता है। अब इमीडिएटली हमें गाड़ी सीखनी है तो उसमें इमीडिएटली कहाँ होगा, उसमें हमें टाइम लगता है, हमें सोझबूझ अपना दिमाग इस्तेमाल करके हम एक डिसीजन ले सकते हैं कि हम फुल्ली ट्रेन है और हम गाड़ी चलाने के लिए तैयार हैं। फिलहाल चुनार बीच की गाड़ी तो निकल पड़ी है, 2 बजे तक आप मेरे साथ है और मैं आपके साथ हूँ। सुन लीजिए हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर पे ये ट्रैक 33 से 33 का ऑल योर रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरफ।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: अब प्यार के दीवाने तो हम सभी हैं, पर शो चन्नार बीट्स की पूरी वाइबो ड्राइव है।
1: चन्नार बीट्स विद हर्षित दीवा ओनली ऑन रेडियो चन्नार 90.4 FM।
0: जी हाँ, बीट्स ऑन रिपीट शो चुनार बीट्स आप एंजॉय कर रहे हैं ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM। ढेर सारी बातें हो रही हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इस टाइम पे ढेर सारी चीज़ों के बारे में, यानी कि हमारी ज़िंदगी में हर टाइम क्या चल रहा था। लेकिन एक ऐसा सेगमेंट जिसके बारे में कुछ खबरें

0: Cid.
1: Diva.
2: Diva.
0: खबर ऑनलाइन
3: आज की खबर, आज की खबर, आज की खबर।
4: जी हाँ, आज की खबरें लेकर मैं हूँ हाजिर। तो वन बोझ तो खबर विस्तार सान आखिर क्या छ आज की खबर तो कत बारस मज कत करान। So we are talking about movie Toxic, Toxic, yes, Toxic, it's Toxic and people are so excited about the movie that lot of more exciting things are happening right now because agar hum baat kare Toxic ki abhi Yash ka jo andaaz hai, Kiara ka jo look hai, Huma Qureshi ka jo andaaz hai, Tara Sutaria ki kya baat hai, kya baat hai, kya baat hai, baat hi ho rahi hai, bahut zyada baat ho rahi hai kyunki abhi movie ne jo hai tehlka maza diya hai, just do songs release hue hai aur 8th of August को यानी कि एक दिन के बाद यानी कि परसों मूवी का ट्रेलर आएगा। एवरीबडी इज़ वेटिंग फॉर ट्रेलर। अब मूवी का कितना इंतज़ार हो रहा है। सो एवरीबडी इज़ एक्साइटेड अबाउट टॉक्सिक। पता नहीं क्यों आज की जनरेशन को या फिर आज के वक्त में लोगों को टॉक्सिक चीज़ें क्यों पसंद आती है न जाने क्यों, पर यह है सवाल और आप दीजिए इस कमाल इस सवाल का जवाब कि आखिर क्या है रीज़न बिहाइंड दैट एंड आर यू एक्साइटेड फॉर टॉक्सिक। क्योंकि यश के दीवाने बहुत सारे हैं पर क्यारा के फैंस भी कुछ कम नहीं। मुझे बताए शो कैसे बन जाए। 8 8 0 4 9 0 4 पर आप कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनाव 91.4 FM। धड़काते रहो।

का इश्क ही तो देता फिरता है गवाही, वरना बता खुदा होने का सबूत क्या है।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरफ।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
4: I can't wait because she has absolutely no idea. Let's go.

अनस्टॉपेबल, एक चूर ऐसे सेगमेंट जहाँ पे एक डोज, डेली डोज हर रोज आपके लिए पहुँचाते हैं, जहाँ पर थोड़ा सा डोज अपने बारे में होता है, सबके बारे में होता है। हम ट्राई करते हैं कि अगर कौन सी सी चीज़ें छूट गई है, कौन सी सी चीज़ें जो हमें काफ़ी खुश कर देती है, और कौन सी सी चीज़ें जिनसे हमें लगता है मज़बल आया। एंड आई मीन बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमें खुश करती है, बट आई बिलीव कि जब लोग कश्मीर से बाहर काम करते हैं और वो जब घर आने का सोचते हैं, देखिए आए नहीं होते, जब वो सोचते हैं कि इस महीने, इस हफ्ते मुझे घर जाना है, यानी वो खुशी है, जो वो जो फीलिंग होती है ना, वर्ल्ड की बेस्ट फीलिंग होती है। क्योंकि कश्मीर सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक कश्मीरियों के लिए एक जज्बात, एक फीलिंग है, एक ऐसा जज्बात, आई मीन फीलिंग्स को बयान ही नहीं कर सकते हैं। और हमेशा जब ऐसा लगता है ना कि घर आना है, तो हमेशा वो जो खुशियाँ ना और भी बढ़ जाती है, और हमें ऐसा लगता है कि सच में कितनी सारी चीज़ें ना कश्मीर के बारे में जो हमें और एक्साइटेड कर देती है, हमें एक्साइट कर देती है। सो इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने घर से कितना प्यार करते हैं, इट्स ऑल अबाउट आप अपने कश्मीर से कितना प्यार करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, जब घर आने का सोचे, और बहुत सारे लोग जो मुझे सुन रहे हैं और जो घर आए हैं या फिर जो घर आने का सोच रहे हैं, पूरी दुनिया में जहाँ भी आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, आप आपके थ्रू सुन रहे हो, अभी आप मुझे कहीं पे भी कश्मीर में सुन रहे हो, तो मुझे बताइए कि वो कैसी फीलिंग होती है जब आप सोच रहे होते हैं। फिर वो तो बोलते हैं ना, उसकी बाद वाली फीलिंग होती है जब हम ट्रैवल करते, तो वो बेस्ट फीलिंग है, उसका एक्सपीरियंस वर्ल्ड का बेस्ट एक्सपीरियंस होता है। और जब हम सोचते हैं ना, तो दिल में वो तुप तुप तुप तुप हो रहा होता है, और सच में वो खुशी हो रही होती है कि घर आना है भाई, अब मुझे घर जाना है, मुझे घर वालों से मिलना है, मुझे कश्मीर घूमने को मिलेगा, मैं अपने मोहल्ले में, गली में अपने दोस्तों से मिलूंगी, या जो भी आपकी फीलिंग होती है, रिश्तेदारों के यहाँ जाना है। सो क्या चीज़ें हैं, फंक्शंस, एवरीथिंग, इट्स मोर एक्साइटिंग, इट्स ऑल अबाउट कश्मीर, इट्स ऑल अबाउट पीपल, इट्स ऑल अबाउट व्हाट कश्मीर इज। मुझे बताइए, शो का समझ जाए 8999-0490-4 पर अपनी राय आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं, दिल की कोई बात है जल्दी बताएं। शो का समझ जाए, आप सुन रहे हॉट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनाव 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: Chinar Beats ve Darje Diva only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: ओ मैंने एक मोटरसाइकिल दिला दो ना,
2: कुछ और मांग लेना, मोटरसाइकिल ले
3: दिला दीजिए ना।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: are in need.
1: शो चुनाव भी सब एंजॉय कर रहे हैं ओनली ऑन रेडियो चुनाव 90.4 FM. ये सारी बातें हो रही हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट ट्री रेवोल्यूशन, यानी कि पेड़ लगाना कितना ज़रूरी है और क्या रेवोल्यूशन आता है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा एफोरेस्ट्रेशन करते हैं या फिर समझते कि हमारे इन्वायरमेंट को कितना ज़रूरी है पेड़ों का, या स्पेशली हमारे जंगल ख़त्म हो रहे हैं एंड हम अपने हाथों से अपने इन्वायरमेंट को तबाह करते जा रहे हैं. भाई अगर हम देखें ट्री रेवोल्यूशन की वजह से हाउ इट एक्ट्स डिफरेंटली एंड कितना ज़्यादा ज़रूरी है ट्री रेवोल्यूशन हमारी सस्टेनेबिलिटी के लिए. सस्टेनेबिलिटी के अलावा अगर हम लोकल ट्रीज़ की बात करें या फिर बिजनेस की बात करें या ओवरऑल अगर हम देखें ट्रीज़ का होना हमारे कितना ज़रूरी है उस पर बात होगी. बात हो रही है ट्री रेवोल्यूशन के बारे में, आप भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं. क्या हम इंसानों का फ़र्ज़ है, व्हाट वी कैन डू, व्हाट आर दोज एक्शंस जो हम ले सकते हैं. सिर्फ खाली बोल के नहीं, एक्शन से चेंज आ सकती है हमारे इर्द गिर्द. बस हमने बस ये ख्याल रखना है कि हम वो ज़िम्मेदार इंसान हैं. कोई बोल दे कि भाई पेड़ मत काटिए, फिर हम समझेंगे कि नहीं ये ज़रूरी है. यानी ये हर दिन हमारे अंदर वो एक हैबिट की तरह होना चाहिए कि पेड़ पौधे कितना ज़रूरी है हमारे समाज के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए, और ये हमें क्या फ़ायदा देते हैं. बात हो रही है अभी शो कैसे बन सकते हैं 8899049044 पर एक्स व्हाट्सएप कीजिए. शो चुनार बीस कैसे बन जाएगी.

बीट्स ऑन रिपीट शो चुनार बीट्स अब एंजॉय कर रहे हैं ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम। ढेर सारी बातें हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्री रेवोल्यूशन। देखिए पेड़ पौधे हमारे जिंदगी के लिए, पूरे एनवायरनमेंट के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है एंड सस्टेनेबिलिटी के लिए, एंड ऑल्सो अगर हम देखें हर एक इंसान के लिए, अगर हम देखें कि वो पेड़ हम जो लगाते थे आज बस ये है कि ठीक है भाई हम काटते जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि भाई ठीक है हमारा क्या है, हमारी ज़िंदगी तो निकल चुकी है, लेकिन आगे वाली जो आने वाली जनरेशन है वो तो ये चीज़ देख ही नहीं पाएगी। शायद हम ये भूल गए या हम इसका कंज्यूम इतना ज़्यादा करने लगे हैं, अपने इन्वायरमेंट को इतना ज़्यादा ख़राब करने लगे कि हम भूल चुके हैं कि ये इन्वायरमेंट हमें क्या प्रोवाइड करता है। तो ट्री रेवोल्यूशन क्यों है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एफॉरेस्ट्रेशन की जो बात करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाते हैं, तो कितना ज़्यादा हमें भी अच्छा लगता है, कितना ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट के लिए वो बेनिफिशियल है। वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। आप भी बताइए कि ट्री रेवोल्यूशन किस हद तक ये इंपॉर्टेंट है और कितना आपको लगता है ज़रूरी है, मुझे बताइए। शो का हिस्सा बन जाइए 8999044 पर टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए, शो चुनाव बीट्स का हिस्सा बन जाइए।

it's Vedhar Chediba, only on Radio Channel 90.4 FM.

I'm sorry. So, Chunar Beats up enjoy kar rahe only on Radio Chunar 90.4 FM and we were talking about Tree Revolution ke baare mein aaj show pe baat hui but show abhi khatam ho chuka hai kyunki abhi time aa chuka hai ki show Music on Demand ko kuch hi der ke baad welcome karenge barabar 1:30 se lekar 2 baje tak aap show Music on Demand enjoy karte jahan par aap apne favorite track sun paate hai apne loved ones ko dedicate kar paate hai bas ek show aisa hai na ki jahan par aapki chalti hai main sunti hu aapki request aur करती हूँ और नंबर काफी ज्यादा खास है एक ऐसा नंबर जो आपको हमें जोड़ के रखता है इट्स 8899-0494 आप टेक्स्ट व्हाट्सएप करके शो में शामिल हो सकते हैं आप अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और अपने फेवरेट ट्रैक की रिक्वेस्ट भेज कर आप अपना फेवरेट ट्रैक सुन सकते हैं फिर से बता रही हूँ इट्स 8899-0494 आप शो में शामिल हो जाए और शो म्यूजिक ऑन डिमांड का हिस्सा बन जाइए

Chinar Beats with Dharche Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chunar 90.4 FM and we care for you.

तुझे मुझसे। शो म्यूजिक ऑन डिमांड में ईशा की रिक्वेस्ट आई है इस ट्रैक के लिए, आप एंजॉय कीजिए ऑन योर रेडियो चुनाव 90.4 एफएम पर। आप अपनी फेवरेट ट्रैक अपना रिक्वेस्ट सुनने के लिए 8899904904 पर कॉल कीजिए, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए। शो म्यूजिक ऑन डिमांड कैसा बन जाए।

0: कोक स्टूडियो भारत सब्सक्राइब नाउ।
1: अफरोजा की रिक्वेस्ट आई है इस ट्रैक के लिए, आप एंजॉय कीजिए ट्रैक शो म्यूजिक ऑन डिमांड पे। आप अपना फेवरेट ट्रैक सुनने के लिए 8899904904 पर कॉल कीजिए, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए और शो म्यूजिक ऑन डिमांड का हिस्सा बन जाइए।

शो म्यूजिक ऑन डिमांड का लास्ट ट्रैक, और आबिद की रिक्वेस्ट आई है इस ट्रैक के लिए, आप एंजॉय कीजिए और मैं जा रही हूँ उसी ट्रैक के साथ। अब अपने ख्याल रखिए, असर आएगी 2 बजे, थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा और हंगामा शो में बोल ऑन ड्रामा आप करेंगे, बातें करेंगे असर के साथ। फिलहाल मैं जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखिए, कल मुलाकात होगी 12 बजे। अपना ख्याल रखिए, सुनते रहे रेडियो चुनाव 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

देखिए यूं तो इस गाने में इस बीट पर शाहरुख खान की एंट्री होती है, पर हम क्या शाहरुख खान से कम है क्या? शो शुरू हो चुका है, हंगामा जहाँ होता है भरपूर ड्रामा, एंटरटेनमेंट और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, क्या बाजेंगे और लाइफ का फिलोसफिकल टच मिलता है, और जो फिलोसफिकल टच कहीं और नहीं मिलता।

देखिए शो शुरू हो चुका है और आते आते प्ले कुछ होता है क्रेजी, जो होता है दिल के बहुत खास। Enjoy कीजिए back to back tracks only on Radio Sonar. Show अभी शुरू हुआ है तो बहुत सी बातें होंगी, अभी तो फिलहाल इतना ही, इतने में तो इतना ही मिलेगा साहब। और आगे बढ़ते बढ़ते हम क्या ट्रेंडिंग है, अपडेट्स क्या है, वन मिनट फैक्ट और जो टॉपिक, और उसके अलावा गेम ऑन सेगमेंट जो खासकर शो हंगामा के बाद होता है जहाँ पे आपको स्पोर्ट्स का अपडेट मिलता है। मैं हूँ अस्टा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM।

0: पर
1: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
2: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
1: असरा आ गई तो
2: करो हंगामा आज असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके, गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिए। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chunar 90.4 FM and we care for you.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो

वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। और देखिए, अभी वक्त है कि हम बात करें रेलवे अपडेट का। और आज की जो अपडेट है, दैट इज़ कि आप अपनी जो भी रिस्पेक्टिव स्टेशंस हैं वहाँ 10-15 मिनट पहले पहुँचे, बिकॉज थोड़ा बहुत मौसम ख़राब होने की वजह से कुछ ट्रेन्स में मेंटेनेंस वर्क चल रहा है, तो कुछ ट्रेन्स डिले हो सकती हैं। और लेट अलोन जो 3 ट्रेन्स कैंसिल हो चुकी हैं अप टू 14th of August, वो अभी तक कैंसिल ही रहेंगी अप टू 14th of August। और जो भी नई अपडेट्स है वो आप तक पहुँचेंगी ज़रूर। फिलहाल के लिए अपने रिस्पेक्टिव स्टेशंस तक 10-15 मिनट पहले पहुंचे, और जो बाकी लोकल ट्रेन्स हैं वो एज पर द समर टाइम टेबल है। एंड यू कैन गेट ऑल ऑफ द इन्फॉर्मेशन, लाइव लोकेशन ऑफ द ट्रेन्स, ट्रेन्स बिटवीन स्टेशंस, और कौन सी ट्रेन अभी एग्जैक्टली कहाँ है, वो आप रेल वन ऑफिशियल इंडियन रेलवे ऐप से जान सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ कश्मीर रेलवे लिंक के बारे में नहीं, बल्कि पूरे के पूरे इंडियन रेलवेज के बारे में। मैं हूं असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM में। बस यूं कहीं और यूं वापस आई और बात करेंगे कुछ ट्रैक से बाद कि आज का टॉपिक क्या है। मैं हूं असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार, द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर, बिकॉज इट्स हॉट।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो

वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। देखिए, जैसे कि हर दिन का एक स्पेसिफिक टॉपिक होता है और आज भी हम बात कर रहे हैं स्लो फैशन मूवमेंट के बारे में। अब क्या होता है स्लो फैशन मूवमेंट? एक ऐसा माइंडफुल अप्रोच है, एक ऐसा मूवमेंट है जहाँ पे जो ब्रांड्स हैं या जो फैशन इंडस्ट्री के कर्ता धर्ता हम कह सकते हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम एक्चुअली सिर्फ क्वांटिटी पे भरोसा नहीं करेंगे। जैसे शीन है या बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो एक्चुअली बहुत बड़ी क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बहुत सारा जो मास प्रोड्यूस करते हैं, उसकी क्वालिटी कम होती है बट बहुत अफोर्डेबल होता है, लोगों को मिल जाता है, बट उसमें जो लेबर एक्सप्लॉयटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अब देखिए, बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है स्लो फैशन मूवमेंट, बिकॉज स्लो फैशन मूवमेंट ये कहता है कि हमें एनवायरमेंट को नज़र में रखते हुए स्पीड और डिस्पोजेबिलिटी को कम करना है। यानी कि जितना जितना हम ज़्यादा चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा स्टॉक बढ़ जाएगा किसी चीज़ का, तो वो उतना जल्दी डिस्पोज भी हो जाएगा क्योंकि उसकी उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है। तो जब डिस्पोज होगा तो वो चीज़ें लाइक कचरे में ही जाती हैं, और कचरा जितना बढ़ता जाएगा वो फैशन, फास्ट फैशन की वजह से होता है। सो स्लो मूवमेंट, स्लो फैशन मूवमेंट एक मूवमेंट है, एक अप्रोच है, और एक अपनी धरती को बचाने का, और जो फैशन है, फैशन एक कर्स नहीं बनना चाहिए इस दुनिया के लिए, इस मदर अर्थ के लिए। सो बेहतर है कि इस जो स्लो फैशन है उसके जो भी कोर प्रिंसिपल है, सबसे पहला यही है कि क्वालिटी ओवर क्वान्टिटी। जो भी मैन्युफैक्चर हो रहा है, जो कुछ भी मटीरियल बन रहे हैं, वो एक्चुअली कुछ वॉशेस के बाद ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो आप वो फेंक दोगे। सो इट्स बेटर कि वो क्वालिटी पे ज्यादा काम कर रहे हैं। जी हाँ, इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट भरपूर। मैं हूँ अस्ट्रा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। मैं हूँ अस्ट्रा, मैं बस यूं गई और यूं वापस आई।

वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। जी हाँ, शो है हंगामा, बट ड्रामा के साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी होती है। एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट स्लो फैशन मूवमेंट, और क्वालिटी ओवर क्वांटिटी के बारे में बात हो चुकी है, और कैसे एनवायरनमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए जो भी ब्रांड ओनर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं जो भी टॉक्सिक डाइज हैं उनको कम किया जाए, जो भी फैब्रिक है उसको रिसाइकिल किया जाए, नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल हो, और जो वाटर वेस्ट है या कार्बन इमिशंस है वो कम हो। क्यों? क्योंकि हम सब चाहते हैं कि जो मदर अर्थ है हम उसकी प्रोटेक्शन करें, बिकॉज देयर इज़ नो प्लान बी फॉर इट, देयर इज़ नो अदर अर्थ फॉर इट, कि अगर हम एक अर्थ ख़राब करते हैं तो दूसरी तो हाजिर रहेगी। And honestly, this is the high time we should understand that this place, this earth, ये सिर्फ हमारा घर नहीं है, बल्कि ये तमाम उन creatures का घर है, तमाम उन जानवरों, जीव जंतु, flora, fauna, इन सब चीज़ों का घर है। और जब अभी हम ही वो creatures हैं, हम ही वो organisms हैं, humans, जो actually cautious हैं, जिनके पास वो brain, cognitive ability है कि हम सोचें कि क्या सही है क्या गलत है, और वो जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। अगर हम ये चीज़ नहीं करते हैं तो हम किसी और से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी जो भी जानवर है, फ्लोरा है, फौना है, या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म्स तक, यही बात है कि उन्हें जिस तरीके से ऊपर वाले ने फ्रेम किया है, जो उन्हें मालूम है, बिकॉज दे डू नॉट हैव कॉन्शियसनेस, दे जस्ट ईट, ब्रीड एंड अदर थिंग्स जो उनके नेचुरल प्रोसेस में होता है, बट हमें वो चीज़ें, जिम्मेदारी हमें मिली है कि हम इस मदर अर्थ का ख्याल रखें। इसके अलावा जो स्लो फैशन मूवमेंट है, काफ़ी ज़्यादा वो वर्सटाइल भी है, और ऐसा नहीं है कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है लुक्स के साथ। एक बहुत ही कैप्सूल वार्डरोब वाला अप्रोच है कि आपके पास इतने नंबर ऑफ़ टॉप्स हैं, इतने नंबर ऑफ़ बॉटम हैं, आप कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज ला सकते हैं, एंड बाई स्विचिंग एंड रिप्लेसिंग एंड लाइक शफलिंग ऑल ऑफ द टॉप्स एंड द बॉटम्स एंड एवरीथिंग, यू कैन मेक डिफरेंट आउटफिट्स। बिकॉज देखिए, ये लगता है

है कि ये बहुत ऐसा कॉन्सेप्ट है कि शायद उनके लिए जिनके पास उतना कैपिटल नहीं है, पैसा नहीं है, तो उनके लिए करना बेहतर है. नहीं, ये उन सब के लिए करना बेहतर है जो इस दुनिया में रहना चाहते हैं, जो इस अर्थ पर रहना चाहते हैं. और जो भी कंज्यूमर्स हैं, जैसे मैं हूँ, आप हैं, बाकी लोग हैं, हम सब कॉमन लोग जो एक ब्रांड ओन नहीं करते हैं, जो एक क्लोदिंग ब्रांड ओन नहीं करते हैं, बल्कि हम कंज्यूमर्स हैं फैशन के. फैशन सिर्फ और सिर्फ कुछ एक्सपेंसिव

देखिए अब इन्फॉर्मेशन तो हो गया बट एंटरटेनमेंट का डोज जरूरी है. मैं वस्त्रा सुन रही है रेडियो सुनार 90.4 एफएम क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन. मैं बस यूं गई और यूं वापस आई एंड देन आफ्टर सम ट्रैक्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि कंज्यूमर कैसे पार्टिसिपेट करे इन स्लो फैशन मूवमेंट. मैं वस्त्रा सुन रही है रेडियो सुनार

वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 FM. एंड जैसे कि मैंने कहा था कि क्या हम कर सकते हैं एज अ कंज्यूमर टू पार्टिसिपेट इन स्लो फैशन माइंडसेट. सबसे पहले इट्स नॉट अबाउट कि आप अपना पूरा का पूरा वार्डरोब नए से खरीदें, कुछ नया करें या सब कुछ चेंज कर दें. बट इट्स डेफिनेटली अबाउट कि जो भी आप पहन रहे हैं उसके प्रति आपका जो बिहेवियर है वो चेंज हो. जो आगे आने वाले जो चीज़ें आप खरीद रहे हैं उसके प्रति आपका जो बिहेवियर है वो भी चेंज हो. सबसे पहले जो भी आप पहन रहे हैं उसका ख्याल रखिए. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपके किसी कपड़े में थोड़ा सा माइनर टेयर है या आपको जो भी बॉडी ऑल्टर होती है, ऑब्वियसली सबकी ऑल्टर होती है, चेंज होती है बॉडी, चाहे आप एक लेडी हैं या आप एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं या आप फिटनेस पे भरोसा रख रहे हैं, तो अगर लूज हो रहे हैं, टाइट हो रहे हैं कपड़े, तो अकॉर्डिंगली आप ऑल्टर करने का अगर चांस है तो ज़रूर करिए. अगर ऑल्टर नहीं कर सकते और सही कंडीशन में कपड़ा है तो रिसाइकिल करने के लिए भेज दीजिए. जो इस्तेमाल कर सकता है वो कपड़े उनको दे दीजिए जो लेना चाहते हैं, या नहीं तो आप कीप इट देयर. यू विल डेफिनेटली यूज इट समटाइम्स व्हेन यू आर इन दैट शेप. इसके अलावा बात करें तो डेफिनेटली दिस इज सच अ बिग थिंग जिसके बारे में बात होना जरूरी है, दैट इज थ्रिफ्ट शॉप्स, विंटेज शॉप्स या ऑनलाइन जो रीसेल प्लेटफॉर्म्स होते हैं. इन सेकेंड हैंड पलव छासा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि हम क्यों खरीदें, इवन इफ अगर वो सही कंडीशन में है तो हम क्यों खरीदें. इसलिए खरीद सकते हैं, इट इज कि आप बचत कर रहे हैं तो अपनी भी और आप एनवायरमेंट को बचा रहे हैं. किस तरह? क्योंकि जितना जितना आप नई नई चीज़ें खरीदेंगे, जो पुरानी चीजें हैं वो वेस्ट में चली जाएंगी और वाटर वेस्ट बढ़ता रहेगा, दुनिया में जो भी कचरा है वो और ही ज्यादा बढ़ता रहेगा. सो अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मे बी बिकॉज ऑफ मनी और नॉट बिकॉज ऑफ मनी, बिकॉज देयर आर सम पीपल्स हु एक्चुअली लव टू गो टू थ्रिफ्ट शॉप्स, विंटेज शॉप्स पे या ऑनलाइन जो सेकेंड हैंड चीजें बेची जाती हैं, दैट्स अ वेरी नाइस थिंग टू डू. व्हाई? बिकॉज यू आर

saving yourself and Mother Earth. And specifically, the last but not the least thing जो हम adapt कर सकते हैं कि वो ये है कि 30-wear rule, ये एक scientifically proven rule है जहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ नई चीज़ खरीदें, okay, so hear me out, अगर आप कुछ नई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो आप अपने आप को पूछिए क्या आप ये चीज़ 30 बार पहन सकते हैं रेगुलरली. अगर हाँ, somehow इट्स नॉट जस्ट अबाउट द नंबर कि आप 30 बार वो पहन सकते हैं कि नहीं, बट अपने आप को एट लीस्ट अकाउंटेबल ठहराइए कि आप कोई भी पर्टिकुलर क्लॉथ हो, कोई भी एक्सेसरी हो, कोई भी चीज़ जो आप नया खरीद रहे हैं, क्या सच में आप उसका सही इस्तेमाल करेंगे. और ये शायद सिर्फ और सिर्फ रिटेल थेरेपी के लिए नहीं होना चाहिए कि आपको कुछ खरीदना अच्छा लगता है. देखिए, शॉपिंग सबको अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है, आपको भी अच्छी लगती है. पैसे खर्चना तो एक बड़ा ही मज़ेदार काम है, बट आपका जी क्या करता है वो ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये ज़रूरी है कि क्या आप सच में वो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे कि नहीं.

मैं वॉज ट्रा सुनते रहिए रेडियो सुनार, और आज ये टॉपिक हमारा था एंड हमने इसके बारे में बात की, स्लो फैशन मूवमेंट. आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है सबसे बड़ा क्या रहता है चैलेंज जब आप कपड़े खरीदने जाते हैं, क्या चैलेंज फेस करते हैं आप? मैं वॉज ट्रा सुनते रहिए रेडियो सुनार, और कुछ ट्रैक से बाद कुछ खास कुछ नया. मैं वॉज ट्रा सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM, द हॉरस फ्रीक्वेंसी.

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: The game is on. Tune into Radio Chennai 90.4 FM. Game on with RJ Asra. Only on Radio Chennai 90.4 FM.
3: Om Mangalam.
2: Welcome back to Show Hangama. Segment shuru ho chuka hai. Game on. सेगमेंट है गेम ऑन, जहां मिलता है आपको स्पोर्ट्स का अपडेट, चाहे वो लोकल, नेशनल या इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अपडेट हो। तो बने रहिए, जुड़े रहिए ओनली ऑन द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर, बिकॉज इट्स हॉट, बिकॉज इट्स इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट। एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 FM। मैं बस यूं कही और यूं वापस आई।

0: No! No!
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
2: Only on Radio Chunar 90.4 FM.

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: The game is on. Tune into Radio Chennai 90.4 FM. Game on with RJ Asra. Only on.

रेडियो चुनार 90.4 FM. वेलकम बैक टू शो हंगामा इन सेगमेंट गेम ऑन, जहां मिलता है आपको स्पोर्ट्स का अपडेट. और अभी की बात करें तो, और आज की बात करें, 1st of August से लेकर 9th of August तक शुरू हो चुका है टूर दे फाइनेंस फेमिन, जो एक्चुअली फ्रांस में एक इवेंट है, फ्रांस में एक कॉम्पिटिशन है रिलेटेड टू साइकिलिंग, एंड दिस इज़ वन ऑफ द टॉप नॉच कॉम्पिटिशन्स इन द वर्ल्ड फॉर साइकिलिंग. ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं होता है बल्कि लड़कों के लिए भी होता है. बट जो अभी की बात करें तो 1st of August 2026 से लेकर 9th of August 2026 तक टूर दे फ्रांस फेम्स शुरू हो चुका है. अब देखिए, आज की हाईलाइट ये नहीं है बल्कि हाईलाइट ये है कि हर्षिता झाकर, जो कि 19 साल की साइकिलिस्ट हैं, फीमेल साइकिलिस्ट हैं, राजस्थान की रहने वाली हैं, शी हैज स्क्रिप्टेड हिस्ट्री, क्योंकि शी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू फीचर इन दिस प्रेस्टीजियस प्रोग्राम. यानी कि अब वो साइकिल चलाएंगी. 9 दिन का बहुत ही मुश्किल कंपटीशन रहता है ये, एंड गेस व्हाट, लाइक शी इज़ ओनली 19 ईयर्स ओल्ड. ऑनेस्टली 19 साल के बच्चों को पता नहीं होती है, और मैं आई विल से दिस कि बच्चों को, बिकॉज 19 साल के बच्चे जो होते हैं एक्चुअली बच्चे ही होते हैं, बट शी इज़ जस्ट अ किड एंड शी इज़ डूइंग सो नाइस. एंड मुझे ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा देश अभी गर्व कर रहा है कि शी हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल, इंडियन फीमेल साइकिल to represent India on such a big platform. और बात करें इस platform के बारे में, बात करें इस event के बारे में, इस competition के बारे में, ये 9-stage competition होता है, 9 दिन consecutively चलता है ये competition. बहुत ही aggressive, बहुत ही मुश्किल competition है, and we like I guess कि हम सब एक like aspiration है कि यह नाम रोशन करेगी हर्षिता, and it will be so nice for everybody. और एक comparison बताएं, men जो stages होते हैं वो 21 स्टेजेस होते हैं, उनमें रिकवरी पीरियड 2 दिन का रिकवरी पीरियड होता है. अगर वुमेन की बात करें तो 9 स्टेजेस हैं और कोई रिकवरी पीरियड नहीं है. Actually, this is a very big news for all of the India that the first female cyclist, Harshita Jhakar, 19 years old, first female Indian cyclist who is representing at Tour de France Films.

0: हमको चांद पकड़ना है।
1: डेफिनेटली साइकिल से छलांग तो नहीं बट रेस करके वो आगे हिंदुस्तान का अपना राजस्थान का नाम रोशन करेगी। मैं हूँ आस्था। ये आज की स्पोर्ट्स का जो अपडेट थी, आज का जो अपडेट था वो आप तक पहुँचा और अभी भी कुछ वक्त बचा है आपकी और मेरी गुफ्तगू में, कॉन्वर्जेशन में। चार तक आपके और मेरा साथ रहता है तो जुड़ जाइए, बन जाइए शो का हिस्सा। मैं हूँ आस्था। 8899049904 इस नंबर यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप। मैं हूँ आस्था, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन।

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
0: The game is on.

ਤੱਕ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ। हाय मैं हूँ अस्टा और आप सुन रहे थे रेडियो सुनार 90.4 FM पे शो हंगामा, जहाँ होता है ड्रामा। अब देखिए आज का जो हमारा साथ है वो यहीं तक था, क्योंकि बराबर चार तक आप और मैं बात करते हैं, एंड चार बजने वाले हैं। और दिस इज़ ऑल अबाउट मी, दिस वाज ऑल अबाउट शो हंगामा। बट जाते जाते हमेशा आई टेल यू कि व्हाई डू यू हैव टू डू द वे यू आर डूइंग इट एंड व्हाट आर यू डूइंग, यू आर डूइंग योर लाइफ, यानी कि हाउ यू कैन एक्चुअली मेक योर लाइफ बेटर, वो ये है कि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रेजी करते रहिए और सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM। एंड आज के लिए बस इतना, Signing off for today, over and out.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: Tella.
1: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
2: Hum hai team Radio Chinar 90.4 FM and we care for you.

माही वे, जी हाँ, हाईवे मूवी का ये ट्रैक खूबसूरत सा ट्रैक है और शो चल रहा है दिल की बात साहिल के साथ। आज हम अपने शो पे बात कर रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग और हेल्थ की। जब बात आती है ना, इट हैज़ बीन सेड ऑलवेज, हम बचपन से सुनते आए हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ और हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना है। और जब से इंसान पैदा होता है तब से हेल्थ की इम्पॉर्टेंस हमें पता चली जाती है और हेल्थ कितना इम्पॉर्टेंट है और कैसे हम बच्चों से लेके खुद का और बड़े बुज़ुर्गों का ख्याल रखते हैं, उसके हवाले से बात हम आज के शो पे करेंगे। फिलहाल आपके लिए एक स्पेशल सा इंटरव्यू हमने कुछ टाइम पहले रिकॉर्ड करके रखा है। इट्स अबाउट द हेड, यू नो, द हेल्थ ऑफ किड्स, जो हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं उनके हेल्थ का हम कैसा ध्यान रखें, उसके हवाले से मैंने पर्सनली डॉक्टर

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ, only on रेडियो चैनल 90.4 FM हर दिल की धड़कन धड़कन
2: धड़कन। It's been said health is wealth, जोर जहां और। रेडियो चनार 90.4 FM से मैं हूं साहिल मुजफ्फर। और जब हम हेल्थ की बात करते हैं, जो हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वी ऑल आर कंसर्न्ड अबाउट देयर हेल्थ। तो इसी सिलसिले में आज हमने एक खास मेहमान को अपने स्टूडियो में बुलाया है। ही इज अ पीडियाट्रिक सर्जन फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर, वेरी एक्सपीरियंस्ड, वेरी यंग, डायनेमिक एंड टैलेंटेड। लेट्स वेलकम डॉक्टर तारिक अहमद मीर। डॉक्टर साहब, वेलकम टू रेडियो चनार।
3: थैंक यू साहिल साहब।
2: डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, जो हमारे घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब इनको कोई तकलीफ होती है, कोई दर्द होता है, हम एडल्ट्स डॉक्टर को बताते हैं कि मेरा ये दर्द होता है, ये छोटे बच्चे इनकी तकलीफ को एज पीडियाट्रिशियन आप कैसे डायग्नोज करते हैं कि इस बच्चे के हद लिए?
3: ये जो पॉपुलेशन रहती है, ये सबसे पहली एक ऐसा सबसेट है पॉपुलेशन का जो बहुत खास है। तो हमें ट्रेन भी किया गया है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम जो है इस जगह सिंपैथी नहीं बल्कि एम्पैथी दिखाएं।
2: राइट,
3: कि वी बिलोंग टू द फैमिली, हम डॉक्टर्स नहीं हैं, हम एक फैमिली का एक हिस्सा है।
2: बिल्कुल।
3: तो जब ऐसा अप्रोच हम पीडियाट्रिक सर्जरी वाले या पीडियाट्रिशियंस रखते हैं, तो हम ऑल टुगेदर ये भूल जाते हैं कि ये पेशेंट जो है अब किसी फैमिली वाले के हैं। जब ऐसा अप्रोच लेके हम जाते हैं, हमारे लिए ट्रीट करना बहुत इजी हो जाता
2: है। जी जी बिल्कुल।
3: तो ऐसा बच्चों के साथ फिर उठना, फिर बैठना, सो एक थीम लेके बच्चों के साथ उठना, बिकॉज ये जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये डायग्नोज करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है।
2: बिल्कुल,
3: ये कह नहीं पाते,
2: क्यों कह नहीं पाते, दर्द कहाँ पे, प्रॉब्लम क्या है।
3: तो सबसे पहली चीज इनके लिए जो हमें लगता है एज पीडियाट्रिक सर्जन्स, पीडियाट्रिशियंस, ये एक बहुत डिफिकल्ट जॉब है। लेकिन जब शुरुआत में एक बार का विजिट, दूसरे बार का विजिट, और सर्जन्स के लिए तो मतलब यू हैव सम मिनट्स,
2: सर्जन्स
3: के लिए तो ये कुछ मिनट्स में है।
2: बिल्कुल।
3: लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बच्चों के साथ वो जो सारा इनके साथ उठना बैठना, फिर फैमिली की वो हिस्ट्री, फिर मदर का वो, हम कभी कभी मतलब खुद भी इमोशनल हो जाते हैं कि हम क्या करो, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप।
2: राइट।
3: लेकिन ट्रेनिंग के दौरान वी सम टाइम फॉरगेट कि वी नीड इमोशंस ऑलरेडी,
2: बिकॉज यू आर ट्रेन्ड,
3: बिकॉज यस यस। सो पीडियाट्रिक सर्जन्स मतलब हैव बीन ट्रेन्ड टू डिसाइड जस्ट इन मिनट्स।
2: राइट।
3: वी नीड एन एक्सरे, वी नीड एन अल्ट्रासाउंड, वी नीड यूरिन एग्जामिनेशन, वी नीड रेडियोलॉजी, क्रॉस सेक्शंस, ये कोई 5-10 मिनट का होता है वो
2: टाइम, टोटल टाइम, फाइनल डिसीजन लेना पड़ता है।
3: तो उस हिसाब से इट बिकम्स डिफिकल्ट समटाइम्स।
2: डॉक्टर साहब, अक्सर जो लोगों में नोशन है कि जब बच्चे की तबीयत खराब होती है, इसको पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाएंगे, जाते भी हैं और बहुत अच्छा काम पीडियाट्रिशियन करते हैं, बट देयर इज अ टर्म जो आपसे जुड़ी है, पीडियाट्रिक सर्जन।
3: जी,
2: फॉर लेमेंस, जो हमारे मतलब हम जैसे लोग हैं जिनको मेडिकल फील्ड का उतना पता नहीं है, व्हाट इज पीडियाट्रिक सर्जन?
3: पीडियाट्रिशियंस हमारे रहते हैं पेरेंट बॉडी, अगर हम आम लफ्ज में समझाने की कोशिश करेंगे, ये फीडर सब्जेक्ट्स रहते हैं।
2: जी,
3: मतलब सारे पेशेंट पहले इन्हीं के पास जाएंगे।
2: बिल्कुल।
3: दे बिकम काइंड ऑफ नोडल पॉइंट्स, नोडल ऑफिसर्स। फिर पीडियाट्रिक सर्जरी, इसमें एक ऐसी स्पेशलाइजेशन क्रिएट की गई है सर्जन्स सर्जरी से आउट करके, जो सिर्फ और सिर्फ वो सर्जिकल इश्यूज देखेंगे जो इन पॉपुलेशन में हो, लाइक न्योनेटोलॉजी अलग से, जिन बच्चों में न्योनेटल प्रॉब्लम्स होंगी सर्जिकल रिलेटेड। अगर हम इसका एक जस्ट ब्रीफ एक समरी देंगे, वो सारे बच्चे जिनमें सर्जिकल इश्यूज हैं,
2: जी,
3: उनके लिए एक अलग से माहिर है, उन्हीं को कहते हैं पीडियाट्रिक सर्जन।
2: ओके।
3: जी जी।
2: अच्छा, ये जो पेशेंट्स होते हैं, ये रेफर होते हैं पीडियाट्रिशियन जो होते हैं कि ये डायरेक्टली विजिट कर सके, हु कैन विजिट ए पीडियाट्रिक सर्जन?
3: अब आजकल का क्या सिनेरियो है, नाउ आज थोड़ा हम बहुत आगे चले गए हैं मॉडर्नाइजेशन में, लोगों में अवेयरनेस है स्पेशलाइजेशन किसे कहते हैं, सुपर स्पेशलाइजेशन किसे कहते हैं।
2: बिल्कुल।
3: लोग ये चीज समझते हैं, लोगों में ये अवेयरनेस

0: बहुत है। अब दोनों तरफ से पेशेंट्स आ सकते हैं, या तो वो सीधे
1: सर्टिफिकेशन
0: को दिखा सकते हैं
1: या डायरेक्टली खुद भी,
0: या वो डायरेक्टली आ सकते हैं खुद ही, या उनको रेफर करते हैं पीडियाट्रिशियन, तो दोनों तरफ से वो एट द एंड उनके पास पहुंच जाते हैं।
1: अगर हम कश्मीर की बात करें, अगर हम ओवरऑल जो मेडिकल फील्ड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट्स ग्रोइंग डे बाय डे। हमारे पास बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज है जो पहले नहीं थी। और अगर हम डेजिग्नेटेड सेंटर्स की बात करें, जो पर्टिकुलरली जो पीडियाट्रिक सर्जन यहाँ जहाँ पे काम करते हैं, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहाँ पे यहाँ पे डेजिग्नेटेड सेंटर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों?
0: आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। अब दिन ब दिन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है,
1: बिल्कुल
0: हर एक स्पेशलाइजेशन अब हमारे डोर पॉइंट पे।
1: एब्सोल्युटली।
0: अब पीडियाट्रिक सर्जरी, जिसमें न्योनेटोलॉजी भी एक पार्ट है, न्योनेटल सर्जरी भी एक पार्ट है, इसके लिए सेटअप बिल्कुल एक स्किल्ड सेटअप चाहिए होता है। जैसे आपका न्योनेट है, ये 3 किलो का है, 2.5 किलो का है, या कभी कभी 1200 ग्राम का है, उसके लिए एक ICU डेडिकेटेड, एक ICU जिसे कहते ही है, ये SNCU करके आता है, स्पेशलाइज्ड न्योनेटल ICU, या फिर ट्रेन एनेस्थेटिस्ट, ट्रेन पीडियाट्रिशियन, उन्हीं रेफरल पॉइंट्स को डेजिग्नेटेड सेंटर्स कहते हैं। अभी अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाने की कोशिश करेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखेंगे, SNCUs है हमारे पास, GMC बर्मा मेडिकल कॉलेज बारामूला में भी है। अब हमारा क्या रोल रहेगा उन सेंटर्स के लिए?
1: जी,
0: हर एक जगह पे अभी पीडियाट्रिक सर्जन है, बारामूला में भी है, अभी GMC में सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है GMC श्रीनगर, वहाँ एक फुल फ्लेज्ड डिपार्टमेंट है। इसके अलावा जो नया चिल्ड्रन हॉस्पिटल बना हुआ है, वहाँ पे भी रेफरल पॉइंट्स हैं, और स्किम्स तो है ही, तारुफ की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अभी भी बहुत सारी जगह में ऐसे है जहाँ अभी तक हम पीडियाट्रिक सर्जरी को उतना एक्सेल नहीं कर पाए हैं। करने की जरूरत है, कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता,
1: ग्रेजुअली इट्स ग्रोइंग, यू नो, इन अ राइट डायरेक्शन। वी
0: डेफिनेटली एक बॉडी भी इसके लिए जरूरत है, पीडियाट्रिक सर्जन के लिए एक अहमियत है, क्योंकि डायरेक्शन तभी एक चीज को मिलेगी जब हमारे पास उस चीज की एक अहमियत होगी। आप लोगों को ये सब समझना चाहिए कि पीडियाट्रिक सर्जरी और न्योनेटल सर्जरी एक अलग से स्पेशलाइजेशन बन रहा है,
1: right.
0: आप सपोर्ट की, आप समझे इसमें,
1: बिल्कुल
0: सपोर्ट, पेरेंट्स आर द मेन सपोर्टर्स,
1: राइट।
0: तो पेरेंट्स को भी चाहिए अपनी जगह की पीडियाट्रिशियंस हैं, पीडियाट्रिक सर्जन हैं। मैं आपको एक चीज अपडेट करता हूं कि आप पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट भी हमारे पास
1: जी
0: श्रीनगर, अपने इस कश्मीर में बहुत से अच्छे अच्छे पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, न्योनेटोलॉजिस्ट भी है। हाँ, हमारे ही नॉर्थ कश्मीर के एक अभी करें न्योनेटोलॉजी में DM। इसके अलावा पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट भी है। आहिस्ता आहिस्ता इसका वो
1: स्पेशलाइजेशन जो इस फील्ड में है, उसमें नए नए डॉक्टर्स आ रहे हैं, ट्रेन आ रहे हैं। एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि यहाँ पे फैसिलिटीज अवेलेबल है, वेदर इट्स गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, और इट्स ग्रोइंग डे बाई डे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आपकी बात इट एड्स मोर वैल्यू। जो पेरेंट्स होते हैं वो इमोशनली बहुत अटैच होते हैं बच्चों के साथ, एंड इट्स नेचुरल। और कभी कभी उनको लगता है कि हमारा जो बच्चा, इसकी तबीयत खराब है, या डॉक्टर कुछ रिकमेंड करते हैं या ट्रीटमेंट होता है, दे ट्राई टू गो आउट ऑफ कश्मीर, करो आउट ऑफ द बॉक्स, वी आर रेडी टू स्पेंड इन अ लॉट ऑफ मनी, हम दिल्ली जाएंगे या कहीं जाएंगे।
0: जी,
1: क्या उसकी जरूरत है, या हमें यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, बस पेशेंस और ट्रस्ट की जरूरत
0: है? जस्ट टेकन द थिंग आउट ऑफ द बॉक्स। मसला ये है कि ट्रीटमेंट के लिए 3 चीजें बड़ी जरूरी रहती हैं।
1: जी,
0: इसको हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं ABC, देयर इज अ रूल ऑफ ABC। तो सबसे पहले अवेलेबिलिटी की बात है। अगर हमारे साथ मेरे कुछ भी ऐसे बड़े बड़े पर्सनल कलीग्स गए हैं बाहर, अवेलेबिलिटी की बात है। अगर हमारे पास पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट है, एक डेडिकेटेड पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट है, एक सिक्युलर पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट है, अब उसकी अहमियत चाहिए हमें, तो ही इज अवेलेबल, तो हम क्यों जाएं बाहर? हाँ, अलबत्ता अगर वो खुद उसके लिए भी कोई जवाजत है ही नहीं। दूसरा है ABC में बिहेवियर। अगर आप देखेंगे, मतलब टू मी आई फील लाइक स्पेशली डॉक्टर्स फ्रॉम दिस JNK, दे आर एक्सट्रीमली गुड, दे आर
1: वेरी टैलेंटेड।
0: मैंने अपनी स्टडी मेडिकल साइंस स्टार्ट ही की है जम्मू से। आई हैड डन माय MBBS फ्रॉम GMC जम्मू, फिर मैं वहां से यहाँ आया।
1: राइट,
0: पीपल आर एक्सलेंट, पीपल आर डेडिकेटेड, पीपल आर हम्बल। डॉक्टर्स की मैं बात करूं, पीडियाट्रिशियंस तो उसे भी हम्बल, क्योंकि हमारी सोहबत बच्चों के साथ है, सो इट बिकम्स काइंड ऑफ, हम और नीचे चले जाते हैं बिहेवियर में। तो उसके बाद ABC में है तीसरी चीज कॉम्पिटेंसी। तो मैं आपको यकीन कहूंगा, जो हमारे सेंटर्स हैं, स्पेशली जो हमारे खूबसूरत 3 सेंटर्स है अभी पीडियाट्रिक सर्जरी के लिए, डेडिकेटेड सेंटर्स।

0: जीएमसी श्रीनगर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, बड़े काबिल लोग हैं वहाँ। उसके बाद हमारे पास है एसएमजीएस हॉस्पिटल जम्मू,
1: जम्मू
0: वहाँ पे भी है। हम अपने हमारे सारे अपने ही हैं, वो भी बड़ा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे सारे सीनियर हैं, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं तो जूनियर हूँ। तो उसके बाद स्किम्स है, ये तो तीनों सेंटर पार एक्सलेंस है, मतलब कहने की और मतलब वो है ही नहीं कि भाई ऐसे उसको शक, वी हैव अ डाउट, ऐसा है ही नहीं सर।
1: सो पेरेंट्स को ट्रस्ट करने की जरूरत है, ट्रस्ट डॉक्टर, एंड अगर आपको एक्सपर्ट कहते हैं यू कैन यू हैव टू टेक अ सेकंड ओपिनियन from a different place, then it's a different question.
0: Yes, it's a
1: different question. Great. And I must say, chahe wo pediatric field ho ya jitne bhi fields hai, Kashmir mein itne talented doctors hai. We have seen over a period of time, a lot of difficult surgeries has been done here successfully. Aur for the first time, kuch surgeries Kashmir mein hui hai, jo media ke through hum tak pahunchi hai.
0: Bilkul.
1: Aur wo hamare hi yahan pe apne doctors ne gile. और आज के दिन हम इस स्पेशल शो के जरिए उन तमाम डॉक्टर्स को ग्रैंड सैल्यूट करते हैं हु आर वर्किंग डे इन एंड डे आउट, एंड पैरामेडिक स्टाफ, नर्सेस, सबको, क्योंकि आप हैं तो डेफिनेटली हम हैं। डॉक्टर साहब, लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आज की डेट में देखें जो पीडियाट्रिक मेलिग्नेंसी है, इसके केसेस भी अभी सामने आ रहे हैं। एक तो हम जानना चाहेंगे कि इसका रीजन क्या है, व्हाई इट्स यू नो वी सी द यू नो राइज इन दीज केसेस, और इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और इसको पेरेंट्स को आगे जाके कैसे करना है ये टैकल इस सिचुएशन को।
0: ये जो पीडियाट्रिक मेलिग्नेंसीज हैं, सबसे पहले इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नो अबाउट चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम सम मेलिग्नेंसी, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। पेशाब को खराब तो चलता है, पेशाब से तो खून तो चलता है। सो पहली तो चीज वो पहले पहले क्या था कि शायद हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं थी डायग्नोसिस के लिए, तो हम लोग शायद उस सतह पे पहुंचे ही नहीं थे कि भाई आवर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम अ ट्यूमर और समथिंग लाइक अ मेलिग्नेंसी। दूसरी चीज है कि डायग्नोस्टिक जो हमारे पास आर्मेंटेरियम था वो बढ़ गया है। वी हैव सीटीज, वी हैव हेलिकल सीटीज, स्पाइरल सीटीज, वी हैव एमआरआई, वी हैव ऑल दोज फैसिलिटीज। अब जो हॉस्पिटल में बढ़ रहे हैं चीजें दिन ब दिन, हम बायोप्सी करते हैं, हमारे पास कोई स्वेलिंग आती है, बायोप्सीज हो जाती है। सो एक डायग्नोस्टिक आर्मेंटेरियम बढ़ गया,
1: बढ़ गया।
0: तीसरी चीज ये है कि अब लोग जो है, मतलब आई बीइंग अ पीडियाट्रिक सर्जन, आई हैव बीन ट्रेन्ड इन सम पीडियाट्रिक यूरोलॉजी, अब लोग एक स्पेशलाइजेशन चीजों की तरफ है कि आप 3 साल 4 साल एक ही चीज के साथ लगे रहोगे तो यू विल गेट एन एक्सपीरियंस। बाकी मेलिग्नेंसीज का पीडियाट्रिक में ये है कि सबसे पहले जेनेटिक्स है, पेरेंट्स का क्या था इश्यूज, पेनिट्रेंस क्या थी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लाइफस्टाइल बच्चों की, कभी कभी कोई जैसे कोलोनिक मेलिग्नेंसीज है बच्चों में, लाइफस्टाइल पर डिपेंड करते हैं, जैसे रीनल मेलिग्नेंसीज है, विल्मस ट्यूमर से, ये जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन।
1: बिल्कुल।
0: और पीडियाट्रिक मेलिग्नेंसीज बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है ट्रीट करने के लिए और डायग्नोसिस के लिए भी। ना जी, अभी जो है सिनेरियो ऐसा है, व्हेन आई लेफ्ट स्किम्स जस्ट 4-5 मंथ बैक, वी हम लोगों ने पीडियाट्रिक मेलिग्नेंसीज में रीनल ट्यूमर्स ऑपरेट किए हैं, हम लोगों ने न्यूरोब्लास्टोमा विद द हेल्प ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी, हमारा वो जो पेरेंट डिपार्टमेंट जहाँ से पेशेंट रेफर होके आ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ किसी सतह पे काम हो रहा है, काम हो रहा है। अब मेलिग्नेंसीज होती हैं ऐसी चीज जिनका शायद आउटपुट कभी डिसमल भी हो सकता है, आप बहुत मेहनत करोगे बट यू विल गेट रिजल्ट्स आपके पास जीरो रहेंगे। उसके लिए ये रहता है कि पेरेंट्स इस चीज को समझें कि बच्चा है 10 किलो का बच्चा है, इसमें मेलिग्नेंसी आई है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन हो रही है कोशिश, पीडियाट्रिक मेलिग्नेंसीज के लिए भी कोशिश हो रही है।
1: सो इट्स बोथ, जैसे आप कह रहे हैं कि एक तो जेनेटिक है और लाइफस्टाइल भी है, इसमें दोनों का ये इम्पैक्ट है, दिस आर द रीजंस वी कैन पिक। तो इन दोनों का ख्याल रखना है, अगर पेरेंट्स को लगता है कुछ सिम्टम्स हैं, इट इज बेटर टू कंसल्ट अ डॉक्टर एट अर्ली स्टेज जो श्योर हो सकता है। साहब, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है, व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट थ्रू दिस कि अभी ज्यादा केसेस क्या आ रहे हैं, तो उसमें यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन छोटे छोटे बच्चों में, जिसका पता भी पेरेंट्स को नहीं चलता है, you know? एक तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या हैं और फिर इन पेरेंट्स को क्या करना पड़ता है।
0: बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब ये मुझे पूछा जाता था वहाँ स्कीम्स में तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट। पीडियाट्रिक यूटीआईज बहुत डिफिकल्ट रहते हैं सिम्टम्स पिक करना। अगर न्यूनेटल लाइफ में आपका बच्चे को यूटीआई है तो ये नहीं बोलेगा मुझे पेशाब खराब है, इसके सिम्टम्स रहेंगे कि ही विल बी इरिटेबल, ही विल नॉट टेक दीज ब्रेस्ट फीड्स, ही विल हैव वोमिटिंग। तो आपने ये नहीं सोचना है कि मेरी मियाद इस बच्चे खराब।
1: अच्छा,
0: जिसका
1: यूटीआई,
0: यस सर, इसका एक डिफरेंशियल है यूटीआई। अब अगर न्यूनेटल लाइफ से वो निकल गया, ही इज नाउ एन इन्फेंट लेस देन ए ईयर, तो उसमें फेलियर टू थ्राइव एक टर्म आती है कि बच्चे सोन चुन वजन करा कि हैं, तो हम किस तरफ लगते हैं कि शुन क्या हुआ कि हैं। सो हमें भूल जाते हैं कि शायद यूट्यूब

0: या भी इसका एक डिफरेंशियल रहता है। अगर मोटा मोटा कहा जाए बच्चों में, आफ्टर 4 या 5 ईयर्स बच्चा बोलेगा मैज पेशाब करने वी त्रुषि बासा, मैज पेशाब करने वी सुमुशुखी बासा, बिकॉज दैट टाइम वो उसका एक वो ना काइंड ऑफ जेंडर आइडेंटिटी बन गई होती है,
1: वो सेंस भी डेवलप हो जाता है ग्रेजुअली।
0: तो वो फिर 4-5, लेकिन अगर हम स्टार्ट से करें इस चीज की तरफ ध्यान, सो इसके सिम्टम्स बड़ी वेग रहते हैं।
1: इट कुड हैपन इन न्यूबॉर्न बेबीज एज वेल, जो 2 महीने 3 महीने 15 दिन हो सकता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इट कैन स्टार्ट इवन फ्रॉम डे 1।
1: अच्छा,
0: कुछ ऐसी डिजीजेस हैं बच्चों में जो आखिरकार प्रेजेंट करती हैं एज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, एंड इट कैन प्रेजेंट फ्रॉम डे 1। सो पेरेंट्स को एक वेग अपनी जगह पूरी अब डायरी रखने की जरूरत है कि हमारे बच्चों में अगर ये है तो ये तो नहीं है।
1: बिल्कुल
0: हाँ, तो पीडियाट्रिशियंस जो हमारे मतलब बहुत काबिल पीडियाट्रिशियंस है फील्ड में हॉस्पिटल्स में, उनके दिमाग में हर हमेशा ये चीज रहती है कि यूटीआई भी देखे जाए अब, लेकिन शायद पहुंच नहीं पाते पेरेंट्स, शायद पहुंच नहीं पाते, देन वी गेट अनफॉर्चुनेटली देन वी गेट
1: हो जाता है
0: सम डिजीजेस। दिस यूटीआई कैन डेवलप डिजीज क्रोनिक किडनी डिजीज CKD, जो अमूमन देखा गया है बूढ़ों में जब वो 60 साल के पहुंच जाते हैं।
1: अच्छा,
0: डॉक्टर साहब इनमें डायलिसिस करें, वो एक दैट इज ए डिफरेंट सिनेरियो। लेकिन अब बच्चों में क्या है, अगर यूटीआई स्कारिंग, यूटीआई कैन डेफिनेटली लीड टू द किडनी स्कार्स, वो फिर बहुत आगे चला जाता है। सो इसकी ये जो वेग टर्मिनोलॉजी है, वेग इस पे
1: But if it is diagnosed at the right time, it can be cured.
0: Definitely. Almost, I think, if there are some 10 types of disease, almost 8 or something, you just get it around 9 types of those, 90% disease will be cured on time if agar wo pehle hi diagnose ki.
1: So we can say parents se unko updated rehna hai, what are the symptoms, if they feel, even if ye UTI nahi bhi ho, at least check up karwaye to doubt clear ho jayega aur bacche ki sehat bhi achhi reh jayegi. Acha doctor sahab, अक्सर जो पेरेंट्स होते हैं जो फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम जिनको अल्लाह ताला ने इस खुशी से नवाजा है, वो बहुत ही इमोशनल भी होते हैं और मोर ओवर वो चाहते हैं कि ये जो बच्चा हमारा पैदा हुआ है बस ये रातों रात ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बड़ा हो जाए, और वो अक्सर इस परेशानी में रहते हैं अश्विन बाइचस शायद ग्रोथ गसा असल की है, इसका वजन कम है, इसकी जो फिजिक है वो हमें लग रहा है नहीं, इट्स नॉट अप टू दैट मार्क जितने बच्चों में होती है, और वो इस चीज को लेके कंसर्न होते हैं, और आपके पास भी बहुत सारे आते होंगे ऐसे बचनाशन ग्रुप भी खड़ा, इसके बारे में हम जाने।
0: मैं आपको क्या बताऊं, आई एम ऑल्सो ए न्यू पेरेंट, मेरी अलहमदुल्ला 3, आई गॉट 3 डॉटर्स,
1: अलहमदुल्ला,
0: इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट उनको कन्विंस करना, मैं अपने घर वालों को नहीं कर पाता हूँ कन्विंस, लेकिन वी हैव ए मेडिकल लाइब्रेरी जिसमें हम उनको बताएंगे कि भाई साहब यूर या माय सिस्टर योर बच्चा इज ऑल फाइन, हमने हाइट देखनी है बच्चों की जैसे पीडियाट्रिशियंस कर रहे हैं, हमने जो है उनके एंथ्रोपोमेट्री देखनी है, उनका वेट देखना है, फिर एज के हिसाब बिल्कुल बिल्कुल, फिर एज के हिसाब से वो टैली जब होगा फिर उनके सामने पड़ेगा आपका क्या, आपका बच्चा तो बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे इस क्या कहेंगे हम ग्रोथ रिटार्डेशन या फेलियर टू ग्रोथ, वो तो या उनके घर वालों को भी दूर से पता चलता है कि असोन बच्चों वजन कर रहे हैं, कि फिर डॉक्टर की गाइडेंस के बाद वो पता चल जाता है। मैं इट्स लाइक आउट ऑफ इफ आई सी सम 100 पेशेंट्स विद द चीफ कंप्लेंट ऑफ असोन बच्चों ग्रोथ कर रहे हैं कि ओनली सम 10 या सम 15 है प्रॉब्लम, बाकी
1: इट्स फाइन,
0: एंक्शियस पेरेंट्स आर जस्ट कि हमारे बच्चे कब बड़े हो,
1: आउट ऑफ केयर एंड लव, दे वांट कि हमारे बच्चे यू जल्दी से जल्दी बड़े हो जाए,
0: इट्स लाइक दैट।
1: चलो अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, और पेरेंट्स को भी हम कहेंगे कि आप भी थोड़ा इन डॉक्टर साहब वैल्यूएबल जो एडवाइसेस दे रहे हैं उनकी तरफ हमें भी ध्यान देना है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट अभी हम बात डिस्कस करेंगे, और ये सवाल बहुत लोगों का है जो अभी न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं या जो मदर्स होती हैं लैक्टेटिंग मदर्स, वो अभी बहुत सारी ऐसी यू नो वुमेन हैं जो प्रेफर नहीं करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग, दे यू नो वो प्रोबेबली देर आर सर्टन रीजंस, एज अ डॉक्टर एज अ पीडियाट्रिक सर्जन आप इसको कैसे देखते हैं, आपने ऐसे केसेस भी देखे होंगे, और अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड करते हैं तो उसके क्या यू नो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं?
0: ये तो बड़ा एक टेरेबल जो अब ये क्या कहेंगे एक
1: ट्रेंड बन गई है,
0: एक ट्रेंड है, एक डेमोग्राफिक शिफ्ट है कि मदर्स यूजुअली प्रेफर टू गिव फॉर्मूला फीड्स या समथिंग लाइक दैट, कि ऐसे ब्रेस्ट फेड इज यूनिवर्सल, इट्स ग्लोबल, ऐसा नहीं है कशीरी मजीज जमा बच, ऐसा नहीं है। अब हम लोगों को इसके लिए, क्योंकि कहा जाता है नॉलेज इज द बेस्ट मेडिसिन,
1: बिल्कुल
0: ब्रेस्ट फीडिंग के जितने फायदे इस बच्चे को है उससे ज्यादा फायदे इसकी मदर को है, It is like a weapon against malignancies. Against uterine malignancies, ovarian malignancies, cervical malignancies, breast malignancies. And to iska jo mother ka, kyunki ye jo postpartum period rehte hai, delivery ho gayi. Him is much as a psychological kind of

0: ट्रेंड अगर सन फ्रॉम इसने एक बच्चे को डिलीवर किया, अभी अब शिफ्ट हो रही है वापस नॉर्मल। वो जो पूरा वो पीरियड जो है वो 40 डेज 42 डेज 6 वीक्स है जो भी पीरियड है पोस्टमार्टम पीरियड, उसमें जो है ये मदर साइकोलॉजिकल भी रहती है टफ, चिड़चिड़ापन आ जाता है, मूड मूड स्विंग्स आ जाएंगे, सो जाए। तो ये ब्रेस्ट फीड उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है,
1: राइट।
0: फिर हमारे पास कभी क्या आता है, आती है हमारे गायनोकोलॉजी वालों के पास कभी मदर चीफ कंप्लेंट करके आती है वेट, वेट देखो ये फिजियोलॉजिकल चीज,
1: राइट,
0: वेट गेन का सुन, एंड दिस ब्रेस्ट फीडिंग इज सो सो इम्पोर्टेंट टू गेट दिस वेट बैक,
1: इसमें भी हेल्प मिलती है। अगर वो ब्रेस्ट फीड करेंगे बच्चे को, उनका वेट फिर से नॉर्मल हो जाएगा।
0: और एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चे में तो पता ही है ब्रेस्ट फीडिंग का था इम्पोर्टेंट,
1: बिल्कुल
0: इम्यूनिटी
1: बढ़ जाती है,
0: मोरल इम्यूनिटी देवा, इम्यूनोग्लोबुलिन देवा इस बच्चे, ये जो इसके क्लोस्ट्रम वो मिल्क निकलता है वो सारा कुछ। लेकिन जो सबसे ब्यूटीफुल चीज है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, इससे भी ब्यूटीफुल है बॉन्डिंग, वो एक ऐसी बॉन्डिंग बन जाती है कि मतलब इट्स काइंड जो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, वो एट द एंड ऑफ द डे बॉन्डिंग जबरदस्त है,
1: बिल्कुल। और हम उम्मीद करते हैं क्योंकि ये सवाल हम तक भी बहुत बार पहुंचते हैं, जो हमारे लिसनर्स हैं वो हमें पूछते हैं कि अगर डॉक्टर साहब वहां पे आएंगे तो ये क्वेश्चन, क्योंकि ये ब्रेस्ट फीडिंग इट्स जो आपने कहा इट्स ट्रेंड, और जो वर्किंग मदर्स हैं वो चाहती हैं कि अभी हमें छह हफ्ते जो आपने कहा पोस्टमार्टम जो पीरियड है वो घर पे स्पेंड करेंगे, उसके बाद हमें प्रोबेबली फिर से काम पे जाना पड़ेगा, तो तब दिक्कत होगी। इससे पहले कि आज से ही बच्चे को वो फॉर्मूला उसको हम देंगे ब्रेस्ट फीडिंग से थोड़ा
0: इसके लिए करेंगे। एक अल्टरनेटिव ऐसा है, जब मैं जम्मू में था कम्युनिटी मेडिसिन हमारी पोस्टिंग थी, बहुत सारे ऐसे मदर्स हमें मिली जो वर्किंग थी, तो दे वर डूइंग लाइक EBM एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क, उनका जैसे टाइम था 10 बजे से लेके 3 बजे ऑफिस टाइम या 11 बजे से 4 बजे तक जो भी उनका टाइम था, वो पहले ही एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क निकाल देकर
1: लेते हैं। वो दो पंप्स आते हैं, इलेक्ट्रिक भी आते हैं, मैनुअल भी आते हैं,
0: बिल्कुल राइट,
1: कूल। और यू कैन स्टोर इट इन
0: रेफ्रिजरेटर,
1: देन
0: बच्चा जिल होके पी रहा है तो बाद में अब आओगे, यू कैन कंटिन्यू दैट। देयर आर अल्टरनेटिव्स, देयर आर अल्टरनेटिव्स ब्रेस्ट मिल्क, कुछ कुछ जगहों पे ब्रेस्ट मिल्क मतलब मेडिकली ये है कि यू अवॉइड ब्रेस्ट मिल्क, जैसे न्यूनेटल लाइफ में भी ए मदर हु इज सफरिंग फ्रॉम सम those diseases जिसका जो है बच्चे पे भी असर करेगा, like mother is suffering from disease malignancy, the mother is on chemotherapy, advisable because this chemotherapy teratogenic है, बच्चे पे असर पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करे। मदर इज सफरिंग फ्रॉम लो लाइक हेपेटाइटिस, क्रोनिक हेपेटाइटिस बी जिसमें लिवर फेलियर है, तो मतलब इसकी अगर समरी बनाए तो सारी ड्रग्स जो आपके ब्रेस्ट मिल्क से निकल गई वो आपके बच्चे पे असर कर सकती हैं, तब जाके आपका डॉक्टर जो आपको देख रहा है गायनेकोलॉजी या पीडियाट्रिशियन जो आपको दे, वी विल कम टू दिस नॉलेज कि नहीं आप यहाँ पे ब्रेस्ट मिल्क नहीं दे सकते हो, वो एक चीज बनती है, बाकी और मुझे नहीं लगता है और कोई ये है।
1: डॉक्टर साहब एक और इम्पॉर्टेंट सवाल जो मेरे जहन में अभी आया, अक्सर हम देखते हैं कि आज की डेट में हमारे जो बच्चे 2.5 साल 3 साल के होते हैं, इट्स जस्ट ये वो एज होती है जो खेलने कूदने के दिन होते हैं, हम क्या करते हैं इन बच्चों को उठा के स्कूल भेज देते हैं, इनके कंधों पे 5-5, 6-6 kg बैग लगा देते हैं टिफन, और आइडिया ये रहता है कि 10 बजे से लेकर 4 बजे तक ये स्कूल में रहेंगे। तो यू नो एज अ फादर एज अ डॉक्टर एज एन एक्सपर्ट आप ये सिनेरियो को भी कैसे देखते हैं, इट्स प्रोबेबली आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन,
0: बड़ा ये क्या कहेंगे मतलब पॉलिटिकल सवाल, बट आई हैड आंसर इट। मसला ये है जो स्कूल्स आजकल वो ट्रेंड बन गया है कि यू जस्ट गेट द चाइल्ड फ्रॉम 4, क्रच डालें वो डालें ये डालें, अब स्कूल्स को भी जिम्मेदारी लेनी है क्योंकि पेरेंट्स तो फी कर रहे हैं, बसेस भी हैं, स्कूल बसेस भी हैं। जहां तक मुझे लगता है अगर मुझे कोई स्कूल वाले पूछेगा कि भाई हम क्या करें, सबसे पहले दिस बैग शुड बी ऑफ कैटेगोरिकली, लंच बुक्स दें आप, जो भी लंच देना है बच्चे को ड्राई लंच दें, कुछ दें, पानी दें।
1: और ये जो आप बात कर रहे हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो भी NEP हो रही है उसमें दिस पॉइंट इज देयर कि बच्चों का जो बैग है इट शुड बी इन द
0: इट्स ऑलरेडी
1: हाँ इट्स देयर, बच्चों को खाली आप टिफिन दो, वो आएंगे स्कूल में पढ़ेंगे बैग वहीं पे छोड़ के घर जाएंगे, ग्रेजुअली इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड, अभी 100% नहीं हुई है
0: NEP 2020।
1: यस यस
0: हाँ, जहां तक क्योंकि आप देखें जब ये छोटा सा बच्चा है, अगर हम मतलब बीइंग एन एक्सपर्ट विद बच्चास, अगर हम देखेंगे दे गेट दिस बैग टू लाइक ऑन एवरी 5-6 kilo गेट द बैग व्हेन दे गो टू द स्कूल, वहां पे हेल्प हो या ना हो बैग ड्रॉप कर लेते हैं 5-6 kilo का, एट द एंड ऑफ द डे उनकी जो ये मसल्स हैं शायद ओवर ग्रोथ कर जाती है या जो भी हमारी बॉडी की पूरी मसल्स हैं, तो एक ऐसा चक्का जो डिजीजेस है आगे जाके जो बुढ़ापे में थी, जो 70 साल 80 साल में आती,
1: वो थोड़ा जल्दी आ जाती है।
0: बिल्कुल।

0: प्रिफोन हो जाती हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है अवेयरनेस इस चीज के लिए बहुत
0: बहुत
1: ज्यादा
0: जरूरी है,
1: इम्पोर्टेंट है कि स्कूल्स को भी थोड़ा सा अब
0: इवन पेरेंट्स को भी ये बर्दाश्त करना चाहिए कि बच्चे हैं, लेट देम प्ले फॉर 3-4 ईयर्स, उनको वो बचपन जीने दो, देन वो पूरी जिंदगी पड़ी है दिखने के लिए।
1: एक चीज पर्सनली ऐड करना चाहूंगा, मतलब जहां से मैंने स्कूलिंग की या मेरे पेरेंट्स ने जहां मुझे स्कूल के लिए भेजा, लोकल स्कूल, बट लेटर ऑन दे ग्रेजुअली हैड डन वेरी गुड थिंग्स। ये प्राइमरी
0: जी
1: स्कूल एक ऐसी जगह है जहां बच्चों को सिर्फ सीखना है हैबिट्स, अच्छी आदतें।
0: राइट
1: हाँ, प्राइमरी स्कूल फिफ्थ का टारगेट रहना चाहिए कि मैंने इस बच्चे का असल असल आदत
0: आदत
1: सिखा।
0: है।
1: फिर जो अब आया मिडिल स्कूल समझे या
0: सिक्स्थ ऑनवर्ड्स,
1: हाँ ये आपका आया हायर सेकेंडरी, उसमें पीक करते हैं बच्चे।
0: राइट राइट,
1: आप पहले लेट देम कूल,
0: लेट
1: लेट
0: देम
1: देम गेट
0: कूल,
1: कूल, आराम से टेंशन चिल होके
0: लेट देम एंजॉय देयर और चाइल्डहुड।
1: इतना भी मतलब मतलब जस्ट इट्स नॉट लाइक दैट। जस्ट अपडेट माई ऑडियंस या माई डियर फ्रेंड, हमारे पूरे कश्मीर में, नॉर्थ कश्मीर में, वी आर ओनली टू पीडियाट्रिक सर्जन। मेरे एक सीनियर हैं, बहुत काबिल हैं, वेरी बहुत काबिल हैं, और आई एम आफ्टर हिम इन दिस नॉर्थ
0: नॉर्थ कश्मीर वी हैव ओनली टू
1: वी आर ओनली टू पीडियाट्रिक सर्जन। प्रैक्टिस करने तो बहुत सारे आते हैं, मेरे सीनियर्स हैं, कुलीग्स हैं, आते हैं बहुत प्रैक्टिस।
0: जिनके रूट्स नॉर्थ कश्मीर से जुड़े हैं
1: हाँ
0: वो
1: हाँ
0: दो ही हैं,
1: वो बिल्कुल दो ही,
0: दूसरे कौन है?
1: वो हमारे हैं डॉक्टर सजाद।
0: डॉक्टर
1: डॉक्टर सजाद बहुत काबिल है, मतलब ही इज एन एक्सट्रीम, ही इज ए जीनियस। अब मसला ये है कि अगर मैं अपनी प्राइमरी स्कूलिंग देखूं या सर की प्राइमरी स्कूल है, हम लोगों ने चील किया है, हम लोग फेल भी हुए हैं, हम लोगों ने फिर थोड़ा पढ़ा भी है, फिर हम लोग बैक बेंच भी बैठते थे, फिर हम कभी गाड़ी में भी नहीं जाते। सो हैबिट्स है, हैबिट्स
0: बिल्कुल
1: हैबिट्स में ऑलरेडी देयर, बेसिक से लेके आज तक अच्छी हैबिट्स होना इट्स वेरी गुड थिंग।
0: अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि वक्त की जो
1: हाँ
0: वो घड़ी की सुई जो है ना, वो तो इशारा करेगी कि इट्स ओवर नाउ, क्योंकि वक्त की कदर करनी बहुत जरूरी है। जो पेरेंट्स अभी आपको रेडियो चुनार के इस प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, नॉट ओनली इन कश्मीर, अवर प्लेटफॉर्म्स अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में आपको देख रहे हैं लोग, तो जो पेरेंट्स है खासकर, उनके लिए जो ये छोटे बच्चे, इनका ख्याल तो करते हैं एज ए पीडियाट्रिक सर्जन, एज एन एक्सपर्ट, एज ए डॉक्टर, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, अगर समराइज करेंगे कि उन पेरेंट्स को क्या करना है?
1: इट विल बी काइंड ऑफ मतलब सेंटिमेंटल इमोशन टू ऑल पेरेंट्स, टू ऑल मदर्स, गुड मदर्स, एंड टू ऑल दोज फादर्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट दिस इज माई फ्यूचर, दिस चाइल्ड आफ्टर आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स, ही इज गोइंग टू कैरी द बर्डन,
0: राइट,
1: सोशल बर्डन, इकोनॉमिकल बर्डन, साइकोलॉजिकल
0: फैमिली का पूरा,
1: सो लेट हिम ग्रो,
0: राइट,
1: लेट हिम ग्रो एंड चिल आउट, लेट हिम ग्रो। वेन एवर ही विल बी हैव काइंड ऑफ दैट डिजीज और पैथोलॉजी, यू विल कम टू नो हाँ हमारे बच्चे में कुछ मसला है। अदरवाइज छोटी छोटी चीजें जो जुकाम, फिर ये हल्का सा डहेरिया, हल्का सा पेटों में दर्द, सो उसके लिए इतना ज्यादा
0: परेशान होने की जरूरत ही नहीं है,
1: नहीं है। लेट देम ग्रो, ये जो ये दे आर आवर चिल्ड्रन, मतलब हमारा जो पूरा सेटअप है आर कंट्री या वर्ल्ड, बिकॉज हम कहीं और तो नहीं रह रहे,
0: राइट राइट,
1: सो दिस इज आवर सेटअप, आवर स्टेट, आवर लैंड, आवर कंट्री, एंड द काइंड ऑफ थिंग इज लाइक दिस, वी शुड अप्रिशिएट स्कूल्स, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी जो भी अपना वो एफर्ट एक डाल रहे हैं एज ए यूनाइटेड टीम, वी शुड नो कि ये हमारे बच्चे हैं, कल को इन लोगों ने आगे जाके फ्यूचर संभालना है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनके लिए ये है कि लेट देम ग्रो, लेट देम ग्रो। जब भी कुछ ऐसा होगा, अवेलेबिलिटीज, फैसिलिटीज आर अवेलेबल,
0: राइट,
1: जीएमसी बारामूला, वी हैव रिहैबिलिटेशन सेंटर, सोपोर, एसडीएच, वहां भी हमारे कुलीग हैं, डॉक्टर मुदस्सिर इज एक्सलेंट पर्सन,
0: यस एब्सोल्युटली,
1: हॉस्पिटल सोपोर, फिर सिकिम्स है, फिर हमारे जैसे ना चीज आगे पीछे भी मिले थे, बट मेन ये है कि वी हैव फैसिलिटी,
0: फैसिलिटी इज अवेलेबल, बस वही ख्याल रखना है और अपनी जिम्मेदारी निभानी है, कोई आपने कहा एज ए पेरेंट वो निभानी है। अच्छा डॉक्टर साहब, रेडियो चुनार इज द फर्स्ट रेडियो स्टेशन ऑफ नॉर्थ कश्मीर और लोग हमें सुनते हैं, बहुत प्यार दिया है लोगों ने हमें, और आपको भी इस प्लेटफॉर्म से अभी लोग देख रहे हैं, एंड वी होप कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको फिर से बुलाएंगे। कुछ कुछ चीजें आज भी रह गई जो आपसे डिस्कस करनी थी, बट वी ऑलवेज कीप अ स्कोप कि अपने गेस्ट को फिर से बुलाए, कोई बहाना तो होना चाहिए। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे यहीं से। हाउ वाज द एक्सपीरियंस बीइंग ऑन द हॉट सीट इन द स्टूडियो और चुनार?
1: इट वाज पहले पहले मिनट से ही मुझे लगा कि इट वाज प्रेशराइज्ड सिचुएशन, बट आपने ऐसे एंगेज रखा मुझे, इट वाज अ काइंड ऑफ दैट क्या कहेंगे इन नटशेल, कि हम लोग जैसे कहीं पार्क में बैठे थे। इट वाज सिंपल लाइक, इट्स ऑल क्रेडिट टू यू सर,
0: greet you.

हमारा स्लोगन ही ऐसा है, रेडियो चिनार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन, एंड वी ट्राई कि हम हर दिल की धड़कन बने. इट वाज वंडरफुल टू हैव यू हियर, और इससे आपके आने से हमारी इज्जत अफजाई हुई. थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्युएबल सजेशंस, एंड इंशाल्लाह यू नो आई प्रॉमिस यू एंड आवर व्यूअर्स एंड लिसनर्स दैट डॉक्टर तारिक साहब विल बी यू नो हियर वंस अगेन ऑन द हॉट सीट. और आपके कुछ सवाल होंगे जो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगली दफा डॉक्टर साहब आएंगे तो वी विल गिव यू डेफिनेटली एन एक्सपर्ट एडवाइस. थैंक यू डॉक्टर साहब, इट वॉज प्लेजर हैविंग यू हियर. तो ये थे डॉक्टर तारिक साहब, ही इज अ पीडियाट्रिक सर्जन, और ये रेडियो चिनार 90.4 एफएम की एक और पहल थी कि हम अपने हेल्थ का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ. और इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी और मेहमान के साथ आपसे करवाएंगे मुलाकात. टिल द टाइम वी मीट अगेन, लेट्स सेपरेट सम लव, सेपरेट सम स्माइल्स.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन।
2: जी हाँ दोस्तों, रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन। आज साहिल मुजफ्फर है नाम मेरा, शो का नाम दिल की बात साहिल के साथ। और आज अपनी दिल की बात हमारे साथ कर रहे थे वन ऑफ द रिनाउंड पीडियाट्रिक सर्जन डॉक्टर तारिक मीर, और उन्होंने आज बताया कि हम बच्चों की सेहत का कैसे ध्यान रख सकते हैं। सेहत की बात हो रही है और आज स्मोकिंग के जो एडवर्स इफेक्ट है उस पर भी बात हमने आगाज में की कि इट्स बेटर टू स्टे आउट ऑफ इट, और ये चीज़ हमारे लिए ना हमारी फैमिली के लिए अच्छी है। वो कहते हैं ना कि अगर आप एक्टिव स्मोकर है आप पे तो इम्पैक्ट पड़ ही रहा है, बट जो आपकी फैमिली है, आपके लव्ड वंस है, जो आपके घर में आपकी इस आदत की वजह से पैसिव स्मोकर्स बन रहे हैं, तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फ्रॉम देम। तो इट्स बेटर टू स्टे आउट ऑफ इट, और इस आदत में अगर आप पड़ गए हैं तो भूल जाइए इसे, कोशिश कीजिए अपनी सेहत का ध्यान रखिए। आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार, मैं हूं साहिल मुजफ्फर, लौट के आऊंगा। इन द मीन टाइम एंजॉय दिस ब्यूटिफुल ट्रैक, इट्स कमिंग योर वे फ्रॉम द स्टूडियोज ऑफ रेडियो चिनार, ओनली ओनली ओनली फॉर यू।

ऑलराइट दोस्तों, आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं लाइव और शो चल रहा है दिल की बात साहिल के साथ. आज खूबसूरत सी शाम में खूबसूरत सी मौसीकी और स्पेशल इंटरव्यू भी हमने आप तक पहुंचाया. और आपसे जब हम बात करते हैं ना तो वक्त कहां से निकल जाता है यकीन मानिए पता ही नहीं चलता है. बट इट्स ऑलवेज ग्रेट टू इंटरेक्ट विद यू इवन दो इट्स वन वे कॉन्वर्जेशन. लेकिन आपके जो रिस्पॉन्सेज हम तक पहुँचते हैं ना वो इसको टू वे कॉन्वर्जेशन बना देता है. एंड वी गाइज आर लविंग इट. रेडियो चनार इज ऑलवेज देयर और आपके साथ हम जुड़े रहें, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे ऑनलाइन हो. हमारे जो ऐप हैं वहाँ पर आप हमें सुनते हैं या आप हमें रेडियो पर लाइव सुनते हैं. इट्स अ बॉन्ड, इट्स अ फैमिली. और इस प्यार को ऐसे ही बनाए रखिए, हमें प्यार दीजिए, हर शो में हमारे साथ जुड़िए, अपने फीडबैक्स हम तक पहुँचाइए और रेडियो चनार को ऐसे ही अपने दिल में समा के रहिए. फिलहाल आज के इस शो का और आज के इस प्रोग्राम का जो आखिरी नगमा है वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं. मुझे दीजिएगा इजाज़त. इंशाल्लाह कल आपसे 4 बजे होगी फिर मुलाकात इसी शो में जिसका नाम है दिल की बात साहिल के साथ. बट म्यूजिक कंटिन्यूज ऑन रेडियो चनार. आज आप सुहानी शाम में कुछ स्पेशल डेडिकेटेड नगमे सुनेंगे जो किसी स्पेशल सिंगर के होंगे जो हमने आपके लिए क्यू करके रखे हैं. आपको उसके लिए करना पड़ेगा इंतजार क्योंकि सुहानी शाम इज एवरी डे. वी आर प्लेइंग सम सुपर कूल म्यूजिक ओनली फॉर यू. फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत. टिल द टाइम वी मीट अगेन, लेट्स सेपरेट सम लव एंड लेट्स सेपरेट सम स्माइल्स.

0: Chinar Beats with Harshi Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: मेरे साथ खुशी को बर्बाद होने में टाइम नहीं लगता. सो उससे पहले ही एंड ऑफ स्टोरी.

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाए क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ, only on रेडियो चैनल 90.4 FM हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
0: Chinar beats with Harshi Deva only on Radio Chinar 90.4 FM.

Chinar Beats ve Darje Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ, only on रेडियो चैनल 90.4 FM हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: दिल को
3: करार आ जाए
2: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
2: दबी यादें महक जाए
3: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
3: सुनिए सुहानी शाम
2: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
3: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: खाना खाना खाना

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: तुझे याद है ना आज पापा तुझसे बात करने वाले हैं?
2: उन्हीं से मिलने की तैयारी कर रहा हूँ।
1: सलून में?
2: लड़कों की खूबसूरती सलूनों में नहीं, बैंकों में निखरती है। अगर आज लोन पास हो गया ना, घर और घरवाली एक साथ फिक्स हो जाएंगे।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

रेडियो चनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

रेडियो चुनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

रेडियो चनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

रेडियो चुनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

रेडियो चुनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4
1: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर

दिन, चैन, आराम, राति, सुबह, दोपहर और शाम, छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं, देखो ना दर्द, हिस और जख्म दे जाते हैं, तो आप कुछ नहीं कहते हैं।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बात लेकिन एक बात

زندگی کا سفر ہے یہ کیسا سفر.

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।
1: हाँ।

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप ही ने सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूं, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहां तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कही ना।
2: सा सारे ग, दम पा, पा, मा, ग, दम पा, पा, मा, रे, मा, ग।
3: हाँ, सा

0: ओ सवरिया ओए होए ओ तेरी तिरछी नजरिया
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया ओ सवरिया।

0: आए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ।

0: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ो गोरी, ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़
1: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय।

0: तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी, वो थी हम थे,
2: हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

ने खींचा आ हा हा घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा मैंने खींचा आ हा हा हम थे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना याने याने याने प्यार हो गया बाजू।

0: यूं ही साथी
1: है बंधी मुट्ठी लाख की
2: और रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: अरे बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना, अब ना ही कोई उम्मीद ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: आते।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।